आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोष शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ए तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, कन तुहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेक्ट श्रोता तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे यही बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंडी।

0: बोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
3: समझे?
4: माखन की मिठास, मुरली की धुन, जीवन में आपके बरसे खुशियों का जुनून। राधा कृष्ण का प्यार, कन्हैया का नटखटपन, माँ यशोदा का लाड प्यार, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा

आपके परिवार पर हमेशा कान्हा की कृपा बनी रहे। नटखट नंदलाल आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ और शांति लाएं, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गया।
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे?
6: कर्तव्य।
5: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है और झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सुनो, आज बाहर खाना खाने चलते हैं ना?
12: क्यों, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है?
11: नहीं ऐसी बात नहीं है।
12: तो फिर कैसी बात है?
11: वो मेरा आज बर्तन धोने का मन नहीं है।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। सड़क तोड़ी तो भरनी होगी, दोबारा बनाने की लागत की 5 गुना रकम। प्रदेश सरकार जल्द खरीदेगी 1000 इलेक्ट्रिक, 200 हाइड्रोजन बसे। साई धर्मशाला में गर्ल्स वॉलीबॉल खिलाड़ियों के ट्रायल्स 8 से 9 तक। 2 लाख परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली। चुनाव जीती आशा वर्कर्स पूरा कर सकेंगी अपना कार्यकाल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण आपसी समझौता करवाने के लिए 12 सितंबर को जिला व उपमंडल न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन करने जा रहा है। यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आर मिहुल शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इन लोक अदालतों में बैंक से संबंधित श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंसिंग, पूर्व मुकदमेबाजी व लंबित मामलों पर सुनवाई होगी। वे व्यक्ति जो मुकदमे से पहले संबंधित व्यक्ति अथवा विभाग से समझौता करने का इच्छुक है तो वे संबंधित कोर्ट में आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मालरोड शिमला स्थित सहकार सदन के नवीनीकरण कार्य का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। इस नवीनीकरण कार्य पर 2.85 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत इमारत की हर मंजिल को विशेष रूप से व्यवस्थित किया जाएगा। इस नवीनीकरण से पुराने भवन को एक नया आयाम मिलेगा। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सहकार भवन के नवीनीकरण कार्य को 15 जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बहुमंजिला इमारत का कायाकल्प कर इसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश का अग्रणी सहकारी बैंक है। यह प्रदेश भर में आधुनिक और भरोसेमंद बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक की पुरानी शाखाओं और इमारतों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परियोजना के तहत मेजनाइन फ्लोर पर आधुनिक वर्कस्टेशन और केबिन पार्टीशन तैयार किए जाएंगे और ग्राउंड फ्लोर पर नया रिसेप्शन वर्कस्टेशन और एडवांस स्क्रीनिंग एरिया बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त बेसमेंट 1 में कॉन्फ्रेंस हॉल वर्कस्टेशन, बेसमेंट 2 में बच्चों के लिए समर्पित क्रैच क्षेत्र, बेसमेंट 3 में आधुनिक आधारभूत सुविधाएं और एक व्यवस्थित स्टोरेज एलिवेशन का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सड़क अवसंरचना को नुकसान पहुंचाने, अतिक्रमण करने और सड़क किनारे मलबा या जब्त वाहन छोड़ने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में हिमाचल प्रदेश में सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1000 इलेक्ट्रिक और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों की ओर बढ़ रही है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर जाने की पहले ही बजट में घोषणा की है। इलेक्ट्रिक बसों के साथ 12 साल का रखरखाव भी शामिल है। दिल्ली सरकार की ओर से खरीदी गई बसों की तुलना में प्रदेश को ये बसें कम दर पर मिल रही हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के धर्मशाला स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE में गर्ल्स वॉलीबॉल खिलाड़ियों के चयन के लिए 7 से 9 सितंबर तक ट्रायल होंगे। ट्रायल में शामिल खिलाड़ियों को 7 सितंबर सुबह 9 बजे साई के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रिपोर्ट करना होगा। चयन के लिए आयु वर्ग के अनुसार न्यूनतम ऊंचाई तय है। 1 जनवरी 2011 या उसके बाद जन्मी खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 172 सेमी, 1 जनवरी 2010 या उसके बाद जन्मी खिलाड़ियों के लिए 174 सेमी, 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मी खिलाड़ियों के लिए 176 सेमी और 31 दिसंबर 2008 या उससे पहले जन्मी खिलाड़ियों के लिए 180 सेमी कद अनिवार्य है। केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक JP शानी ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को आवासीय प्रशिक्षण, विशेषज्ञ कोच, खेल किट, आधुनिक उपकरण, शैक्षणिक खर्च, भोजन आवास और चिकित्सा बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार की हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में इस दिशा में अनेक योजनाएं बनाकर धरातल पर उतारी गई हैं, जिसका लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 2 अक्टूबर से प्रदेश में मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना आरंभ करने जा रही है, जिसके तहत लगभग 2 लाख अति निर्धन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि इनमें से 90,000 ऐसे परिवार हैं जिन्हें अभी तक किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और प्राकृतिक खेती के उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायत चहत दी है, आशा कार्यकर्ताओं को राहत दी है। कोर्ट ने निर्णय आशा कार्यकर्ताओं को कहा कि जो आशा कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में चुनी गई हैं, उन्हें नियमानुसार कार्यकाल पूरा करने की अनुमति।

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में दो बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
3: समझे?
4: माखन की मिठास, मुरली की धुन, जीवन में आपके बरसे खुशियों का जुनून। राधा कृष्ण का प्यार, कन्हैया का नटखटपन, माँ यशोदा का लाड प्यार, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा प्रण।

आपके परिवार पर हमेशा कान्हा की कृपा बनी रहे। नटखट नंदलाल आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ और शांति लाए, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: है गोरिया।
1: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
2: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
6: चाय मांगी थी, क्या है ये?
7: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
6: मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
8: अब क्या देख रहे हो पापा?
6: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
8: किससे?
6: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
8: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
7: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
9: सुनो, आज बाहर खाना खाने चलते हैं ना?
10: क्यों, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है?
9: नहीं ऐसी बात नहीं है।
10: तो फिर कैसी बात है?
9: वो मेरा आज बर्तन धोने का मन नहीं है।

चले कृष्ण को समझने, कृष्ण तो खड़ा ही टेढ़ा है, न किसी की समझ में आया न किसी की समझ में आएगा। एक बार धारा में उतर के देख लो, राधा को समझ के देख लो, इसी धारा में कृष्ण मिल जाएगा। देखो कैसे धारा राधा रूप लेकर कृष्ण को नचाती है और कृष्ण समझे बंसी की ताल पर राधा नाचती है।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है आप सभी का बेहद खास और बेहद प्यारा सा ये कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर।

दोस्तों, कृष्ण जी का नाम है गोकुल, जैन का धाम है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सभी का प्रणाम है। जो दिल से श्री कृष्ण को याद करते हैं, कृष्ण उनके हर संकट दूर करते हैं। जय श्री कृष्ण। मुरली की धुन, माखन की खुशबू, राधा की भक्ति और कृष्ण का प्यार, यही है जन्माष्टमी का प्यारा सा त्योहार। तो दिल से बोलिए दोस्तों एक बार कि हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। आप सभी को आज के इस पावन अवसर की, जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आपके घर में, आपकी जिंदगी में श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद बना रहे, खुशियां अपार इसी तरह से आती रहें। जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और आज होने वाली है ढेर सारी मस्ती, क्योंकि जन्माष्टमी, कृष्ण कन्हैया का दिन है। आज उन्हीं के लिए प्यार और ये ढेर सारी मस्ती। जी दोस्तों, तो छुट्टी भी आप सभी मना रहे हैं और मंदिरों में भक्ति कीर्तन जो है सब चल रहा है, तो घर में भी तो माहौल होना चाहिए ना। जी दोस्तों, तो बहुत ही प्यारी सी ये शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रम की, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। बातें आज थोड़ा हम कम करेंगे और ढेर सारा मनोरंजन आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी, ताकि आप सभी झूम सकें, नाच सकें और इस दिन को खास बना सकें। क्योंकि अगले पल क्या होगा, क्या नहीं होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए जिंदगी में आने वाले पलों की इस परेशानी को थोड़ा सा दूर रख दीजिए और अपनी जिंदगी के इन खास लम्हों को प्यारा बनाइए, खूबसूरत बनाइए, मस्ती से भर दीजिए। तो आइए दोस्तों, मस्ती की बात है तो मस्ती सिर्फ बातों से नहीं, प्यारे प्यारे से मनोरंजन से होती है। तो आइए इंजॉय करते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

0: जी दोस्तों, जिस तरह से आप सभी ने ये प्यारा सा मस्ती भरा गीत एंजॉय किया, ये मस्ती इसी तरह से आपकी जिंदगी में हमेशा बनी रहे, क्योंकि दोस्तों दुख आते हैं और काले बादलों की तरह छाते हैं, फिर चले भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी की जिंदगी में हमेशा के लिए दुख रहते हैं, परेशानियां रहती हैं। अगर हमारी हिम्मत बरकरार है, जुनून है उन मुश्किल घड़ियों से लड़ने का, तो वो बादल कुछ ही समय के बाद छट जाते हैं। जी दोस्तों, तो आज का दिन बहुत खास है, जन्माष्टमी स्पेशल है। भादों का महीना घटाएं घनघोर, आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। जेल में जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, लीला प्रभु ने देखो कैसी रचाई। खुल गए ताले सारे ना चला किसी का जोर, आधी रात को इत मथुरा उत गोकुल प्यारा, बीच में बह रही जमुना की धारा। धन्य हो गई जमुना जब देखे नंद किशोर आधी रात को। नंद रानी खुश पड़ी नंद हर्षाए, तीनों लोकों के स्वामी घर में है आए। इतना प्यारा लल्ला ना देखा कहीं और आधी रात को। अन्न धन गौएं नंद बाबा बांटे, सोना चांदी हीरे मोती दान लुटावे। ढोल नगाड़े बाजे नहीं खुशियों का है ठोर आधी रात को। ये है जन्माष्टमी का खास और पावन सा त्योहार, पावन सा अवसर। तो बिल्कुल दोस्तों, कन्हैया जी आपके घर द्वार आने वाले हैं खुशियां लेकर, और ये खुशियां हमेशा इसी तरह से बरकरार रहें। और फिलहाल दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मनोरंजन बातचीत के साथ साथ कुछ खास बातें और भी हैं, यानी कि हमारे आसपास की कुछ खास जानकारियां। तो समय है प्रादेशिक समाचारों का। 9:20 हो चुके हैं दोस्तों, तो मिलते हैं आप सभी से समाचार के इस छोटे से ब्रेक के बाद। उसके बाद आप सभी को ढेर सारा मनोरंजन और ढेर सारी बातचीत की ओर लेकर जाने वाले हैं। बातचीत भी मनोरंजन से भरी ही रहने वाली है, बिल्कुल शांति से इंतजार कीजिए और बने रहिए अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: होगा विचार विमर्श। देश सहित प्रदेश भर में जन्माष्टमी पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल राज्यपाल कविंद्र गुप्ता 26 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से करेंगे सम्मानित, और चंबा जिला की विश्व विख्यात मणि महेश यात्रा आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय की मेजबानी में आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आयोजन की शुरुआत होगी। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। मंच पर न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और

0: करने पर विचार किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश सहित प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इधर प्रदेश के मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। राजधानी शिमला के गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भी भक्तों की सुबह से ही कतारें लगी हुई हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर शिमला के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी को लेकर शहर के मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर और बालूगंज के गोपाल मंदिर में आज रात को विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा शहर के अन्य मंदिरों में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाया जाएगा। सुबह भगवान का विधिवत पूजन और श्रृंगार होगा, जिसके बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोले जाएंगे। दिन भर भजन कीर्तन से भगवान की लीलाओं का गुणगान होगा। रात भर जागरण के साथ श्रीमद् भगवद् गीता और श्रीमद् भगवद् महापुराण के कृष्ण जन्म प्रसंग पर पाठ किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से युवराज शर्मा।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को नई दिशा देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की गहरी प्रेरणा निहित है, जिसने निरंतर मानवता का मार्गदर्शन किया है। इधर राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कामना की कि ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां और ऊर्जा का संचार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके आदर्शों को सभी को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने समाज को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और मानव कल्याण के प्रति समर्पित रहने का मार्ग दिखाया।

0: ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। 5 सितंबर यानी कल शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता लोकभवन शिमला में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अनुसार प्रक्षेपण के करीब 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-05 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GSLV-F17 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इसरो और भारतीय उद्योग के बीच बढ़ती साझेदारी से देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ताकत और विस्तार मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे इसरो की शानदार उपलब्धि और देश के लिए गर्व का क्षण बताया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
1: कल मैंने अपना बीपी और शुगर की जांच करवाई और मेरा शुगर बढ़ा हुआ आया है।
2: अच्छा, कहाँ करवाई ये जांच?
1: यही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। बड़ी सुविधा है, शुगर और बीपी दोनों की जांच हुई और दवा भी आज से चालू हो जाएगी, वो भी बिना किसी पैसे के।
2: क्या मैं भी करा सकती हूँ?
1: बिल्कुल, ये जांच 30 साल से ऊपर सभी लोगों को हर साल में करवानी चाहिए।
2: मैं आज ही जाती हूँ।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पवित्र डल झील में छोटे स्नान के साथ ही आज चंबा जिला की विश्व विख्यात मणि महेश यात्रा का आगाज हो गया है। आधिकारिक रूप से ये यात्रा राधाष्टमी यानी 19 सितंबर तक चलेगी। मणि महेश डल झील में आज सुबह हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और सामने स्थित कैलाश पर्वत के दर्शन किए। भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था के लिए देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु हर वर्ष इस यात्रा पर आते हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा व यातायात व्यवस्था के लिए 500 पुलिस व होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं जगह जगह लंगर की व्यवस्था के अलावा मेडिकल, घोड़े, खच्चर, अस्थायी आवास, संचार सेवा और हेली टैक्सी की सुविधा भी मुहैया करवाई गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
4: इस बार आम श्रद्धालुओं के कुक्ती ट्रैक से मणि महेश जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है। यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पग उठाते हुए प्रशासन ने छोटी प्लास्टिक की बोतलों व छोटे चिप्स के पैकेट की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया है। तो वहीं यात्रा ट्रैक पर नशीले पदार्थ बेचने पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के दौरान दंझोह में BSNL का मोबाइल टावर भी स्थापित किया गया है, जिससे पहली बार यात्रियों को संचार सुविधा मिल पाएगी। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में हल्की से मध्यम वर्षा का समाचार है। वहीं राज्य के कुछ स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है। हमारे सिरमौर जिला संवाददाता ने बताया कि जिले में देर रात भारी बारिश हुई है। बारिश से जिले में सड़क, पेयजल व जल आपूर्ति योजनाएं बाधित होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नाहन रेणुका अवरुद्ध सड़क की बहाली का कार्य जारी है। वहीं नेहली धीड़ा में भारी भूस्खलन के बाद सड़क पर आवाजाही बंद है, जिसे देखते हुए यातायात को परिवर्तित किया गया है। जिले में जल शक्ति विभाग को बीते 24 घंटों में लगभग 68 लाख जबकि लोक निर्माण विभाग को करीब 2 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार राज्य में अभी 95 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 43 ट्रांसफार्मर और 35 पेयजल योजनाओं में असर पड़ा है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, हिमाचल में अब विधायकों की गाड़ियों में लगेगी विशेष झंडी। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, हिमाचल कैबिनेट विस्तार पर फैसले की घड़ी, मॉनसून सत्र के आखिरी दिन अचानक दिल्ली गए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, कैग ने हिमाचल के वित्तीय प्रबंधन पर उठाए सवाल, राज्य में कमाई से ज्यादा खर्च, राजस्व घाटा 6,804 करोड़ पार, कर्ज का बोझ बरकरार। दैनिक जागरण लिखता है, वेतन पेंशन और सब्सिडी में चला गया 86% राजस्व। पंजाब केसरी की एक खबर है, कीरतपुर बिलासपुर मंडी मार्ग पर गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर होगी 80 किलोमीटर। दैनिक भास्कर प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से लिखता है, शिमला के चैडविक फॉल का पानी पीने लायक नहीं, प्रदूषण का स्रोत तलाशे सरकार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सर्वोच्च न्यायालय की मेजबानी में आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आयोजन की शुरुआत, न्याय व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान से जुड़े मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। देश सहित प्रदेश भर में जन्माष्टमी पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल राज्यपाल कविंद्र गुप्ता 26 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से करेंगे सम्मानित, और चंबा जिला की विश्वविख्यात मणि महेश यात्रा आज से शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और बहुत ही प्यारे से इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं आज के इस पावन जन्माष्टमी के त्योहार के दिन। जी दोस्तों, वैसे तो हर दिन खास होता है, हर पल खास होता है, लेकिन आज की सुबह कुछ ज्यादा ही खास रही होगी आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस बालक की जिनके हाथ में माखन की मटकी भी खूब जचती है और हाथ में सुदर्शन चक्र भी, जो कभी यशोदा मैया की गोद में मुस्कुराते हैं तो कभी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देते हैं, जो कभी बांसुरी बजाते हैं तो कभी शंखनाद करते हैं। जी हाँ, आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम, विशेष बातचीत भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित। 4 सितंबर 2026 का दिन है दोस्तों, समय बस इसी तरह से बीतता जा रहा है, हाथों से गुजरता जा रहा है, तो आइए क्यों ना हर पल को खास बनाया जाए।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इस समय आप सभी जुड़े हैं और आज के दिन बहुत ही खास दिन आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। बहुत ही पावन सा दिन है दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को ही क्यों हुआ, अंधेरी रात में ही क्यों, कारागार में ही क्यों, जहां चारों ओर भय था वहीं प्रेम का जन्म आखिर क्यों हुआ? शायद इसलिए कि कृष्ण हमें ये याद दिलाते हैं कि जब जीवन में अंधेरा सबसे ज्यादा हो तभी उम्मीद का दीपक सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और शायद यही जन्माष्टमी का सबसे खूबसूरत सा हम सभी के लिए संदेश है। दोस्तों कान्हा की बाल छवि की कल्पना करते ही जैसे पूरा वातावरण ही गोकुल बन जाता है। जरा कल्पना कीजिए कि एक तरफ मथुरा का कारागार, देवकी और वासुदेव बंदी, कंस का अत्याचार, और दूसरी तरफ वही नन्हा कृष्ण जो आगे चलकर पूरे संसार के लिए प्रेम, धर्म और कर्म का संदेश बनता है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो वासुदेव जी ने उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन किए, श्यामल शरीर, कमल जैसे नेत्र, पीतांबर, चार हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल। वासुदेव जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं परमात्मा है। लेकिन देवकी जी के मन में माँ का भय था। कहते हैं ना दोस्तों, माँ का मन बच्चों की बात आती है तो थोड़ा सा डर ही जाता है। जब बातें सामने हो तो डर अपने आप पनपना शुरू हो जाता है, लेकिन जो एक श्रद्धा और एक कहते हैं ना लगन, एक जुनून सा हम सब में होता है तो उससे हर चुनौती का सामना हम डट कर सकते हैं। हिम्मत अगर हमारे साथ है तो हर चुनौती छोटी सी नजर आती है, हर प्रॉब्लम छोटी सी नजर आती है। तो इसी तरह से आपकी जिंदगी में भी जो ये अंधकार है वो प्रकाश की तरह उज्जवल हो जाए और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए।

तो आई दोस्तों, फिलहाल हमें अपने कार्यक्रम को खुशियों से भरना है, तो देर किस बात की है। एंजॉय कर रहे हैं आप सभी कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों, धौलाधार की बर्फीली चोटियों पर पड़ती सूरज की पहली किरणें, देवदार और चीड़ की खुशबू से महकते पहाड़ी हवाएं, कहीं मंदिर के घंटियों की आवाज, कहीं घर के आंगन में सुबह की चहल पहल, और ऐसी ही खूबसूरत हिमाचली सुबह में आज हम मना रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी। जी दोस्तों, आज की सुबह समर्पित है मुस्काना को, जो मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले, वृंदावन में मुस्कुराए और जिनकी गीता का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा। आज धर्मशाला से लेकर कांगड़ा की घाटियों तक, पालमपुर की चाय बागानों से लेकर चंबा की पहाड़ियों तक, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और शिमला तक, जहां जहां कृष्ण भक्त हैं वहां वहां आज कान्हा के जन्मोत्सव की खुशी है, उत्साह है। जी दोस्तों, हिमाचल की पहचान केवल ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत वादियों से नहीं है, हमारी असली पहचान है हमारी आस्था, हमारी लोक परंपराएं और हमारे संस्कार। यहाँ त्योहार केवल कैलेंडर की तारीख नहीं होते, त्योहार पूरे गांव को जोड़ते हैं, घर में पकवान बनते हैं, बच्चे उत्साहित होते हैं, महिलाएं पूजा की तैयारी करती हैं, बुजुर्ग पुरानी परंपराओं और कथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, और जन्माष्टमी भी ऐसा ही एक बहुत ही पावन सा पर्व है। जी दोस्तों, आज कहीं मंदिरों में भजन कीर्तन होंगे, कहीं झांकियां सजेंगी, तो कहीं बच्चों को कान्हा और राधा के रूप में सजाया जाएगा, तो कहीं रात के 12 बजे भगवान के जन्म के साथ घंटियां और जयकारे गूंज उठेंगे। तो आज की ये बहुत ही प्यारी सी सुबह आप सभी की रही होगी, ये उम्मीद करते हैं, इसी आस्था के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। तो फिलहाल कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

दोस्तों, धर्मशाला के इस सुबह की कल्पना कीजिए कि धौलाधार सामने खड़े हैं, पहाड़ों से आती ठंडी हवा चेहरे को छू रही है, दूर किसी मंदिर से घंटी की आवाज आ रही है, और अगर इसी वातावरण में कहीं से बांसुरी की धुन सुनाई दे जाए तो मन अपने आप कह उठता है, लगता है कि हमारे कान्हा आ गए हैं।

दोस्तों, जहां देवकी जी के मन में माँ का भय था, क्योंकि जब सामने से पता हो कि बच्चे पे कोई संकट मंडरा रहा है तो माँ तो ऑब्वियसली डर ही जाएगी, क्योंकि माँ का बच्चे से एक अलग ही लगाव होता है। तो दोस्तों, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अपना ये दिव्य स्वरूप छिपा लीजिए, और फिर वे विराट स्वरूप एक नन्हे बालक के रूप में बदल गया। यही तो कृष्ण है, जहाँ भक्त को भगवान चाहिए वहाँ भगवान है, जहाँ माँ को बच्चा चाहिए वहाँ कान्हा है, जहाँ मित्र को मित्र चाहिए वहाँ कृष्ण है, और जहाँ मानव को मार्गदर्शन चाहिए वहाँ गीता के कृष्ण है। दोस्तों, अगर श्री कृष्ण आज हमारे बीच होते तो हम उनसे क्या पूछते? कल्पना कीजिए, सोचिए, क्या हम पूछते कि कृष्ण जी, जीवन में इतनी चिंताएं क्यों हैं, रिश्तों में इतनी दूरियां क्यों हैं, मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती, मन को शांत कैसे रखा जाए? और शायद श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते, अपना कर्म करते रहो, मन को संतुलित रखो, और सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। दोस्तों, आज की दुनिया में हमारे पास बहुत कुछ है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन क्या हमारे पास मन की शांति है? हम दूसरों से जुड़े हैं, लेकिन क्या अपने परिवार से जुड़े हैं? हम हजारों लोगों की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन क्या अपने आसपास बैठे इंसान का चेहरा पढ़ते हैं? श्री कृष्ण का जीवन हमें फिर से रिश्तों की ओर ले जाता है। माँ यशोदा का वात्सल्य, नंद बाबा का स्नेह, सखाओं की मित्रता, राधा का प्रेम, और अर्जुन के साथ कृष्ण की मित्रता। कृष्ण हमें बताते हैं, जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं, जीवन रिश्तों, जिम्मेदारियों और प्रेम का भी नाम है। कान्हा की माखन चोरी की कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन जरा इसे दूसरे नजरिए से देखिए। माखन क्या है? दूध को मथकर निकला हुआ सबसे कोमल अंश। हमारे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे मथने के बाद ही सार मिलता है। संघर्ष हमें मथता है, अनुभव हमें मथता है, समय हमें मथता है, और जब हम इन सबके बाद भी प्रेम और सरलता बनाए रखते हैं, तभी जीवन का माखन निकलता है। शायद इसीलिए कान्हा को माखन इतना प्रिय था। जी दोस्तों, तो ये छोटी छोटी सी बातें, प्यारी प्यारी सी, खूबसूरत सी, आप सभी तक पहुंच रही हैं, आप सभी के अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

91.5 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। इस बहुत ही प्यारे से सफ़र को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं और दिन की शुरुआत को भी आप सभी इंजॉय कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन से थोड़ा सा हटकर, क्योंकि आज बहुत सारे कृष्ण भक्तों ने व्रत भी रखे होंगे, कृष्ण भगवान जी के लिए अलग अलग तैयारियां जो हैं वो सभी लगे हुए होंगे करने के लिए, क्योंकि घरों में भी मंदिरों को सजाया जाता है और छोटे से नंद गोपाल जो हैं कुछ लोग जो हैं घरों में उनकी पूजा करते हैं और इसी तरह से इस दिन को खास मनाते हैं और ख़ास करके मंदिरों में जो है कृष्ण भगवान जी के लिए झूला जो है वो लगाया जाता है और पूरा दिन भजन कीर्तन जो है वो मंदिरों में किया जाता है। जी दोस्तों, कहीं ना कहीं मन को शांति और कहते हैं ना कि सुकून फील होता है, मिलता है जब आप वाकई में सच में भगवान को याद करते हैं सच्चे मन से। अब आपका रुख जो है दोस्तों, कार्यक्रम का रुख, आपका ध्यान लेकर चलते हैं कृष्ण के जीवन के उस अध्याय की ओर जिसने पूरी मानवता को जीवन जीने की दिशा दी। जी दोस्तों, बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि। अर्जुन सामने अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गए। हाथ में गांडीव था लेकिन मन में संशय। तब कृष्ण ने कहा, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, निर्णय कठिन होंगे, कभी रास्ते साफ दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उस समय भागना समाधान नहीं, सही कर्म करना ही हमारी जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। तो आप सभी को भी इन बातों से अपनी जिंदगी में सीख लेने की ज़रूरत है। जहाँ हम राह से भटक रहे होते हैं तो यही बातें हमें जीना सिखाती हैं एक नए नजरिए नए तरीके के साथ। चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली,

दोस्तों, आज हमारे जीवन में भी अपने अपने कुरुक्षेत्र हैं। किसी के सामने नौकरी की चिंता है तो किसी के सामने पढ़ाई की चिंता है, चुनौतियां हैं। किसी के सामने परिवार की जिम्मेदारी है तो किसी के सामने आर्थिक संघर्ष है, किसी के सामने अपने मन का संघर्ष है। और ऐसे हर कुरुक्षेत्र में कृष्ण की गीता हमें एक बात याद दिलाती है, कर्म करते रहिए। दोस्तों, कृष्ण चेतना केवल पूजा करने का नाम नहीं, जब कर्म में ईमानदारी आती है कृष्ण चेतना है, जब संघर्ष में भी मुस्कान रहती है कृष्ण चेतना है, जब रिश्तों में प्रेम रहता है कृष्ण चेतना है, जब सफलता में अहंकार नहीं आता कृष्ण चेतना है, जब असफलता में इंसान टूटता नहीं कृष्ण चेतना है, और जब हम अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता को पहचान कर उनसे लड़ते हैं, तब भी श्री कृष्ण हमारे भीतर जन्म लेते हैं। और दोस्तों, धर्मशाला के इस खूबसूरत सुबह एक नई शुरुआत, नए पल की शुरुआत, जब पहाड़ों पर सूरज की किरणें उतर रही हैं, जब हवा में ठंडक है, जब दूर कहीं मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही हैं, तो जरा महसूस कीजिए कि जब बांसुरी की कोई बहुत हल्की सी मधुर सी धुन हवा में घुल रही हो, तो शायद कृष्ण हमसे ये कह रहे हैं कि जीवन को बोझ मत बनाओ, कर्म करो, प्रेम करो, मुस्कुराओ और हमेशा आगे की ओर ईमानदारी के साथ बढ़ते जाओ।

तो उस मुरली की धुन में प्रेम बस जाए, कान्हा के नाम से हर दुख मिट जाए, जिस घर में गूंजे राधे राधे का नाम, वहां वर से सदा खुशियों का धाम।

0: दोस्तों आज की जन्माष्टमी का संकल्प, तो इस जन्माष्टमी पर केवल कान्हा की मूर्ति को सजाने का संकल्प ना लें, अपने मन को भी सजाएं, घर में दीप जलाएं, लेकिन अपने व्यवहार में भी प्रेम का दीप जलाएं। कृष्ण को माखन का भोग लगाएं, लेकिन किसी जरूरतमंद के घर की रसोई में भी सहयोग का माखन पहुंचाएं। मंदिर जाएं, लेकिन अपने माता पिता के चरणों में भी श्रद्धा रखें। भजन गाएं, लेकिन किसी दुखी व्यक्ति के लिए दो अच्छे शब्द भी जरूर कहें, क्योंकि शायद यही वास्तविक जन्माष्टमी है, जब कृष्ण मंदिर से निकलकर हमारे व्यवहार में दिखाई दें।
1: देश विदेश की सैर।

0: जी दोस्तों, जहाँ कृष्ण भगवान जी की ये मधुर सी मुरली सुनाई दे जाती है, वहाँ चैन नींद सब उड़ जाती है। जी दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर, और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी हम सेलिब्रेशन करते हैं, तो क्यों उसे दिन तक सीमित रखा जाता है, क्यों उसके उद्देश्य को समझा नहीं जाता। तो कृष्ण जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं दोस्तों, कृष्ण भगवान जी कन्हैया जी की हम बात कर रहे हैं, तो प्रकृति की बात भला क्यों ना हो, क्योंकि उनका तो प्रकृति से कुछ अलग ही लगाव था ना जी। हर इंसान के साथ प्रेम भाव और प्रकृति के साथ भी उसी तरह से प्रेम भाव जो था उनका बना रहता था। बहुत गहरा सा संबंध जो है वो कृष्ण जी का प्रकृति के साथ था। यमुना का किनारा, वृंदावन के वन, गायें, ग्वाल वाल, बांसुरी, मोर पंख और प्रकृति के बीच खेलता एक नन्हा सा कान्हा। यही कारण है दोस्तों कि हिमाचल के पहाड़ी वातावरण में कृष्ण की बाल लीलाओं की कल्पना करना अपने आप में ही बेहद सुंदर सा अनुभव है। हमारे पहाड़ों में भी तो बचपन प्रकृति के साथ ही बड़ा होता रहा है। पहाड़ी गांव में बच्चों का आंगन ही उनका खेल का मैदान होता था। कभी खेतों के मेड़, कभी जंगल का रास्ता, तो कभी नदी नाले का किनारा और कभी गांव का खुला आंगन। कान्हा का बचपन भी कुछ ऐसा ही सहज, सरल और प्रकृति के करीब था। जी दोस्तों, अब समय थोड़ा सा बदल गया है, सोच लोगों की थोड़ी सी बदल गई है, तो बच्चों का जो बचपन है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। क्योंकि बचपन होता है बच्चों की मस्ती, मिट्टी में खेलना, बाहर बच्चों के साथ खेलना। तो आजकल के बच्चों का बचपन जो है वो सिर्फ चार दीवारी तक सीमित रह गया है। पेरेंट्स बच्चों को बाहर निकालना नहीं चाहते, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना नहीं चाहते। बात करें अपने परंपराओं की, तो बच्चे बहुत दूर रह जाते हैं उन चीज़ों से, क्योंकि आज के समय में रिश्ते बोझ जो है वो लगना शुरू हो चुके हैं। एक दूसरे का साथ लोगों को चिड़चिड़ापन महसूस कराता है, पता नहीं क्यों। बट हाँ, पहले के और अभी के समय की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जितना भी आप मॉडर्न हो जाइए, जितना भी आप अपने आप को बदल लीजिए, लेकिन जो मिठास, जो प्यार, जो खुशियाँ अपनों के साथ, अपनेपन के साथ हैं, वो आपको कहीं भी चले जाइए नहीं मिलेंगी। वो सुकून आपको नहीं मिलेगा, वो सुकून आपको इन्हीं रिश्तों के साथ, अपनों के साथ मिलेगा। तो फिलहाल इसी बात से कि जो भी हम दिन सेलिब्रेट करते हैं, उसके जो कहानी है, उससे जुड़ी कहानी है, उस दिन से जुड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ी बातें हैं, प्रेरणादायक बातें, तो हमें उस पर जो है थोड़ा सा गौर फरमाने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फिलहाल तो आज का दिन मस्ती भरा है दोस्तों, तो इन्जॉय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ढेर सारा इन्जॉय आज के इस प्यारे से कार्यक्रम में आप सभी कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला से।
1: मनस्फूर्ति का परिस्थिति

दोस्तों, जब भी कृष्ण का नाम हमारी जुबान पर आता है, कृष्ण का नाम जब भी हम पुकारते हैं, तो उनका नाम लेते ही गायों और ग्वाल वालों की छवि आंखों के सामने आती है। हिमाचल के ग्रामीण जीवन में भी गाय केवल पशु नहीं रही, वो परिवार का हिस्सा रही है। और आज देखिए, समय मतलब कितना हमें बदल चुका है कि जो गायें हैं चाहे बैल हैं, वो हमें रस्तों में, सड़कों में मिल रहे हैं देखने को। कभी किसी गाड़ी से टकरा रहे हैं, तो कभी न जाने बारिश में भीग रहे हैं, ना उनके सर पे छत है, ना किसी तरह का कोई सहारा है, दर दर भटक रहे हैं हमारी नादानियों की वजह से, हमारे स्वार्थ की वजह से। हम सिर्फ अपनी मतलब की चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जैसे ही मतलब ख़त्म हो जाता है हम उन्हें एक तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कहते हैं दोस्तों, कर्म हमेशा सही रखिए, अगर कर्म सही है तभी कुछ सही हो पाएगा। ये बातें कोई देखे ना देखे, लेकिन जिनका दिन आज हम मना रहे हैं वो ज़रूर देख रहे हैं। दोस्तों, पहाड़ी घरों में पशुधन का अपना महत्व रहा है। सुबह जल्दी उठकर पशुओं की देखभाल करना, उन्हें चारा डालना, गौशाला साफ करना, ये सब हमारे पारंपरिक जीवन का हिस्सा रहा है। इसलिए जब हम कृष्ण की गौ लीलाओं को सुनते हैं, तो पहाड़ का श्रोता उससे सहज रूप से जुड़ सकता है। कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील होना हमारी जिम्मेदारी है। आज जब पहाड़ पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब कृष्ण की प्रकृति केंद्रित जीवन शैली हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो आप कब सीख रहे हैं इन सभी बातों को? वैसे आप बहुत समझदार हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना दोस्तों, कई बार हम जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर ही जाते हैं। तो गलतियों से सीखना बेहद ज़रूरी है।

दोस्तों 91.9 ओमेगा हर्ट्ज पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। इस बेहद प्यारे से खूबसूरत से सफर में आप सभी बने हुए हैं। दोस्तों कृष्ण की गोवर्धन लीला भी प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंध का एक सुंदर सा प्रतीक मानी जा सकती है। हिमाचल में रहने वाला व्यक्ति प्रकृति की शक्ति को सबसे अच्छी तरह से समझते हैं। बारिश, बर्फबारी, भूस्खलन, नदियां, पहाड़, जंगल, प्रकृति हमारे जीवन का हिस्सा है। इसलिए कृष्ण का ये संदेश आज हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रकृति का सम्मान कीजिए। लेकिन क्या हम ये कर रहे हैं वाकई में? ये सवाल खुद से करके देखिए, हम कितना ही योगदान प्रकृति के लिए दे रहे हैं। दोस्तों सेलिब्रेशन जरूर कीजिए, लेकिन उस सेलिब्रेशन के साथ साथ इस दिन के खास मोटिव को नजरअंदाज मत कीजिए। पहाड़ केवल सड़क और भवन बनाने की जगह नहीं है, ये हमारी जीवन रेखा है। जंगल है तो पानी है, नदियां हैं तो जीवन है, पहाड़ सुरक्षित है तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हैं। इस जन्माष्टमी पर कान्हा को माखन मिश्री चढ़ाने के साथ अगर हम अपने पहाड़ों की रक्षा का संकल्प भी लें तो इससे सुंदर भक्ति और क्या ही होगी जी। दोस्तों तो ये भक्ति हम हर किसी व्यक्ति के अंदर होना बेहद जरूरी है, तभी हम जो है प्रकृति का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित उसे पहुंचा पाएंगे।

दोस्तों गुड मॉर्निंग, धर्मशाला कार्यक्रम इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। अपनी डेली रूटीन के साथ थोड़ा सा इसे और ज्यादा खूबसूरती के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आज आपके मनों में जो है, आपके एक कहते हैं ना कि अंदर से भक्ति भाव जो है झलकता है, नजर आता है, सामने से दिखता है, श्रद्धा भाव जो है वो सभी, क्योंकि सुबह उठ के एक अलग रूटीन, वैसे तो हम सुबह उठते ही खाना बनाने शुरू कर देते हैं या जो भी रूटीन होती है वैसे हम शुरू करते हैं, लेकिन आज के दिन सुबह उठकर मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन करके और पूजा पाठ करके जो है दिन की शुरुआत आप सभी की रही होगी, जो फास्ट कर रहे हैं उनके लिए भी और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी। हर किसी का अपना अपना तरीका है हर दिन को सेलिब्रेट करने का, हर दिन को खास बनाने का। तो जिंदगी इसी तरह से खास बनती है दोस्तों। समझे तो बहुत कुछ है, लेकिन ना समझें तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हमारी पहाड़ी संस्कृति में लोकगीत केवल मनोरंजन नहीं है, वे हमारी समृद्धियां हैं, हमारी दादी नानी की कहानियां हैं, हमारी भाषा है, हमारी पहचान है। इस जन्माष्टमी पर अगर किसी कार्यक्रम में कृष्ण भक्ति के साथ स्थानीय पहाड़ी लोक धुन की झलक मिल जाए तो ये हमारी परंपरा और आध्यात्मिकता का सुंदर सा संगम होगा। तो क्यों ना आज हम कृष्ण की बांसुरी को हिमाचल की पहाड़ी धुनों के साथ महसूस करें। बांसुरी की मिठास, पहाड़ों की सादगी और कान्हा का प्रेम। जी दोस्तों, हिमाचली समाज की एक खूबसूरत विशेषता रही है परिवार और सामुदायिक जुड़ाव। एक समय था जब त्योहार का मतलब होता था पूरा परिवार एक साथ। बड़े बुजुर्ग बच्चों को कथा सुनाते थे, बच्चे सवाल करते थे, माँ पूजा की तैयारी करती थी, पिता मंदिर की व्यवस्था में जुटते थे और पड़ोसी भी अपने होते थे। आज हमारी जिंदगी तेज हो गई है, बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन है, बुजुर्ग अकेले हो रहे हैं, परिवार साथ बैठने के लिए समय खोज रहा है और ऐसे समय में कृष्ण की बाल लीला हमें फिर से परिवार के बीच ले आती है। कृष्ण केवल भगवान नहीं, माँ के लाडले बेटे भी हैं। जी दोस्तों, है ना कितनी खूबसूरत सी बात, कितनी प्यारी सी बात। तो आइए इसी खूबसूरत सी बात पे फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को एक मधुर सी धुन की ओर।

दोस्तों एक छोटा सा सवाल आप सभी श्रोताओं से, हाँ आपका भी खुद से, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हिमालय और श्री कृष्ण की शिक्षाओं में कोई समानता हो सकती है? बिल्कुल, पहाड़ हमें सिखाते हैं स्थिर रहो, कृष्ण सिखाते हैं परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो अपने धर्म और कर्तव्य पर स्थिर रहो। पहाड़ सिखाते हैं ऊंचाई के साथ विनम्र रहना, कृष्ण सिखाते हैं सफलता के साथ अहंकार मत आने दो। नदियां सिखाती हैं चलते रहो, कृष्ण कहते हैं कर्म करते रहो। और बांसुरी सिखाती है अंदर से खाली रहोगे तो ही प्रेम और संगीत को जगह मिलेगी। तो आज के इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आइए एक छोटा सा संकल्प लें, हम अपने घर के बुजुर्गों से कृष्ण की कथा सुनेंगे, अपने बच्चों को अपनी लोक भाषा और लोक परंपराओं से जोड़ेंगे, मंदिर जाएंगे तो प्रकृति के प्रति भी जिम्मेदारी निभाएंगे, पहाड़ों को स्वच्छ रखेंगे, प्लास्टिक कम करेंगे, जल स्रोतों की रक्षा करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, कृष्ण के प्रेम को अपने व्यवहार में उतारेंगे। क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी तभी सार्थक होगी जब कान्हा केवल मंदिर में नहीं हमारे मन में भी जन्म लेंगे। जी दोस्तों, तो धर्मशाला के सभी प्यारे प्यारे से श्रोताओं, धौलाधार के इन वादियों से, कांगड़ा की इस धरती से, हिमाचल की इस देवभूमि से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में सुख हो, परिवार में प्रेम हो, जीवन में शांति हो और आपके मन में हमेशा कान्हा की मुस्कान बनी रहे। आज के इस खूबसूरत सी बातचीत के साथ दोस्तों, कान्हा के नाम करते हुए बस इतना याद रखिए, जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है, जहाँ सत्य है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कर्म है वहाँ कृष्ण है और जहाँ प्रकृति के प्रति सम्मान है वहाँ भी कृष्ण की चेतना है। धौलाधार की ऊंचाइयों से लेकर आपके घर के छोटे से आंगन तक गूंजता रहे एक ही स्वर, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जी दोस्तों, तो इन्हीं शब्दों के साथ अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे थे और अभी है वैसे कुछ समय, तो जाने से पहले एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है, तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं, उसके बाद लेते हैं आप सभी से अलविदा, अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की।

दोस्तों इसी के साथ दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे थे और आज का ये बहुत ही प्यारा सा सफर आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तो जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ये प्यार खुशी इसी तरह से आप सभी के साथ बना रहे। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज आप सभी के अपनेपन की।

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
3: समझे?
4: माखन की मिठास, मुरली की धुन, जीवन में आपके बरसे खुशियों का जुनून, राधा कृष्ण का प्यार, कन्हैया का नटखटपन, माँ यशोदा

आपके परिवार पर हमेशा कान्हा की कृपा बनी रहे। नटखट नंदलाल आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ और शांति लाए, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे?
6: कर्तव्य।
5: अरे, सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है और झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सुनो, आज बाहर खाना खाने चलते हैं ना?
12: क्यों, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है?
11: नहीं ऐसी बात नहीं है।
12: तो फिर कैसी बात है?
11: वो मेरा आज बर्तन धोने का मन नहीं है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: डेविड आपकी बेटी की किडनीज बर्थ से ही बहुत कमजोर है। अब जैसे जैसे वो बड़ी होगी डायलिसिस पे डिपेंड करना होगा और कुछ सालों बाद ट्रांसप्लांट। इट्स गोइंग टू बी अ टफ रोड अहेड डेविड।
1: गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: ज्यादा चलती हूँ। अब कब मिलेंगे?
1: आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से आप सभी रख रहे हैं। और एक बार फिर से एक खास जानकारी के साथ, खास कार्यक्रम के साथ आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ। जी दोस्तों, हर हफ्ते आप सुनते हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान, और इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़ते हैं रूमा गुलेरिया जी से, जो कि एक अधिवक्ता हैं और सभी की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। तो आइए सबसे पहले तो स्वागत करते हैं रूमा जी का इस प्यारी सी बातचीत में, प्यारे से कार्यक्रम में।
1: थैंक यू रुचिका
0: जी। तो कैसे हैं रूमा जी आप?
1: बिल्कुल बढ़िया हूँ रुचिका, और उम्मीद करती हूँ आप और हमारे सुनने वाले सभी दोस्त भी बिल्कुल ठीक होंगे
0: जी।
1: और रुचिका, जैसे आप हालचाल पूछ रही हैं ना, तो आजकल ना बहुत सारी चीजें जो है हमें परेशान करती हैं। सबसे पहले तो हमारा जो स्वास्थ्य है,

0: जी उसी को लेकर हम सभी लोग, मुझे लगता है कि जनता में इतनी जागरूकता है कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक हैं और स्वस्थ रहने के लिए काफी मेहनत भी करते हैं।
1: जी
0: मैंने आजकल देखा है लोग अपनी हेल्थ के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं। अगर किसी को लगता है कि मेरा वजन बढ़ रहा है तो वो जिम जा रहे हैं। और मैंने एक चीज और भी देखी, पहले क्या होता था कि हम लापरवाही कर जाते थे, लेकिन अभी क्या है, हम लोग रूटीन चेकअप भी करवाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं और देखो स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी जो है वो परेशान नहीं कर पाती है। लेकिन सब सुविधाएं होने के बावजूद अगर हम बीमार पड़ जाते हैं बार बार तो हमें बहुत तकलीफ होती है और हमारे परिवार के सारे सदस्य भी इस चीज से चिंतित हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, इंसानी शरीर है, बीमार भी होते हैं और इस चीज को हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है।
1: जी बिल्कुल सही कहा रूमा जी ने दोस्तों, कि ये जो बीमारियां हैं, ये जो परेशानियां हैं हमारी जिंदगी में, ये हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। क्योंकि अक्सर बीमारियों की बात करें ना रूमा जी, तो
0: जी
1: वो तभी हम फेस करते हैं जब हम अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते हैं।
0: बिल्कुल, और लाइफस्टाइल पे ध्यान देना बहुत जरूरी भी है। और इसी कड़ी में हम अगर देखें तो हमारी जो आज की जनरेशन है वो काफी कॉन्शियस है, लेकिन थोड़ी लापरवाह भी है। क्योंकि
1: जी
0: हम लोग क्या हैं, टीवी के सामने बैठे रहते हैं और कुछ भी जो भी अनशन आता है वो खा लेते हैं। घरेलू खाना हमें पसंद नहीं आता है। जोमेटो स्विगी जैसे ऐप आजकल इतने चलन में है ना रुचिका, कि जब हमारा मन नहीं होता है कुछ खाना बनाने का तो हम फटाफट से कॉल करके बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं और ये हमारे लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं, हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं जो है नुकसान पहुंचाता है।
1: जी बिल्कुल रुमा जी, आपने बहुत सही बात कही है कि आज के समय में ये जोमैटो, ये स्विगी जो है, एक तरह से हमारे आलसपन को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि जब हम कहीं से आए होते हैं या थके हारे होते, चलो कोई कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम नहीं बना पाते, वो
0: बिल्कुल।
1: एक अलग चीज है,
0: कभी
1: लेकिन
0: कभार
1: कई
0: तो
1: बार
0: रुचिका मेरे को लगता है कि बाहर का खाना खाने में कोई
1: दिक्कत
0: बुराई
1: भी
0: नहीं
1: नहीं
0: है,
1: है। जी
0: खा लेना चाहिए, लेकिन जो हमने रूटीन बना ली है
1: डिपेंडेंसी एक तरह
0: बिल्कुल, और फास्ट
1: से
0: फूड की ओर हम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियों ने हमें घेर लिया है। और आज की जो यंग पीढ़ी है, मैंने पहले भी कहा कि वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, जिम ज्वाइन करके आते हैं, काफी कसरत करके आते हैं और घर में आके फटाफट से जो है वो बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं और कई प्रकार के फास्ट फूड हैं, बाहर का ऑयली खाना खा रहे हैं, तो ये हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता ही है।
1: बिल्कुल
0: और मुझे लगता है कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल। और रुमा जी, आपकी ना ये इशारे जो है, मैं समझना चाह रही हूँ कि किस और जा रहे हैं। तो हमारे
0: बिल्कुल
1: दोस्तों को बताएं कि आज आप ऐसी कौन सी बात, मुझे जहां तक आइडिया लग रहा है तो आप कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी बातचीत जो है हमारे दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं।
0: बिल्कुल रुचिका, बात तो स्वास्थ्य को लेकर है लेकिन मैं बात थोड़ी अलग हटके करना चाहती हूँ।
1: जी
0: देखो रुचिका, आजकल के समय में हम ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो डॉक्टर के पास नहीं जाता
1: नहीं
0: है,
1: जाते
0: और ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है बच्चे से लेके बूढ़ों तक जो बीमार नहीं पड़ता हो और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी भी है और देखो स्वस्थ रहना है तो डॉक्टर से मिलना पड़ेगा।
1: जी
0: लेकिन मैं आज जो बात करने जा रही हूं कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं मरीज बनके या रोगी बनके, जब भी हम जाते हैं तो क्या हमारे कुछ अधिकार भी होते हैं? देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है ना, क्योंकि जब हम
1: बिल्कुल
0: घर से निकलते हैं तो हम तो डॉक्टर के पास इलाज करवाने जा रहे हैं और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी भी यही होती है कि डॉक्टर हमें अच्छे से देखे, हमारा इलाज करे, हमारी बीमारी से हमें निजात मिले।
1: जी
0: लेकिन यहाँ पे अब अधिकारों की बात कहाँ से आ गई है ना?
1: जी
0: आपके मन में
1: बिल्कुल
0: सवाल उठ रहा है और आपकी ये जो प्रश्नवाचक आंखें है ना, तो मुझे लगता है कि हम इसी विषय पे बात कर लेते हैं,
1: जी
0: क्योंकि बहुत जरूरी है। एक मरीज के भी अधिकार होते हैं। जब हम बीमार होके कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं से भी किसी प्रकार का उपचार लेते हैं, तो हमारे अधिकार क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए।
1: जी जरूर। तो आपकी इस खास बातचीत की तरफ जाने से पहले मुझे लगता है कि अपने दोस्तों को थोड़ा सा मनोरंजन की ओर लेकर जाना
0: बिल्कुल,
1: चाहिए,
0: बिना मनोरंजन के तो कोई भी बात हमारी आगे बढ़ ही नहीं
1: बढ़ेगी
0: सकती है।
1: नहीं।
0: तो गाना
1: जी
0: तो जरूर सुनेंगे हम।
1: जी तो क्यों ना आप कि कुछ गुनगु, क्योंकि आजकल आप गीत भी गा रहे हैं और हमारे दोस्तों तक ये बात भी हम जरूर पहुंचाएंगे ताकि वो आपको सपोर्ट करे, आपकी जो है आगे बढ़ने में उनकी हेल्प जो है वो जरूर हो। तो क्यों ना एक प्यारा सा गीत आप अपनी इस मधुर सी आवाज में गुनगुनाए।
0: रुचिका आपने तो बहुत धर्म संकट में डाल दिया मुझे क्योंकि अभी ऐसा कोई गीत मुझे याद भी नहीं आ रहा है
1: जी।
0: लेकिन अभी हाल ही में मैंने कवर सॉन्ग निकाला था, सलमागा जी का एक गाना था
1: जी,
0: बहुत ही मधुर आवाज है उनकी, उसी को मैंने अभी कवर सॉन्ग के तौर पे गाया है और मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हैं आप दोस्तों की बदौलत
1: जी।
0: तो इसी की दो लाइनें मैं सुना देती हूँ
1: जी। मैम
0: फैजा

0: जीरो सु बहुत ही मीठी सी मधुर सी आवाज। देखिए कितना सुकून, कितनी शांति, कितना प्यार इस आवाज में आप सभी तक पहुंचा है ना। बिल्कुल। तो ये आप मैम का कवर सॉन्ग जो है वो यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हैं। रूमा गुलेरिया नाम का पेज है, मे बी आपका है।
1: रूमा गुलेरिया @4073।
0: जी तो बिल्कुल दोस्तों, सपोर्ट और साथ। और कहते हैं ना, एक वुमेन जो है वो मल्टी टैलेंटेड होती है, तो यहीं से पता चलता है कि एक अधिवक्ता के रूप में भी काम कर रहे हैं, एक गृहिणी के रूप में भी काम कर रहे हैं और म्यूजिक फील्ड में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, यही होता है हम सभी महिलाओं में टैलेंट। तो इस टैलेंट की कद्र हमें तो करनी ही चाहिए, लेकिन हमारे सपोर्टर्स को भी करनी चाहिए। तो फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं इसी प्यारे से गीत को, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस प्यारे से सफर में, प्यारी सी बातचीत में।

0: तो दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ ही एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारी इस खास बातचीत में, हमारे इस खास कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान, जो कि आप सभी सुनते हैं अधिवक्ता रूमा गुलेरिया जी के साथ और अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो जानकारियां हैं, ये जो एक तरह से सावधानियां हैं हम आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो आप सभी तक जरूर पहुंचती भी हैं और आप उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई भी जरूर करते होंगे। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। तो रूमा जी, आपने कहा कि जिस तरह से हम हॉस्पिटल्स में जाते, क्योंकि अक्सर हम तो सिर्फ जाते हैं, दवाइयां लेते हैं और वापिस आ जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: कुछ अगर हमारे साथ नाइंसाफी होती भी है तो हम डर के मारे या हिचकिचाहट से चुप रह जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और यहाँ आपने अधिकारों की बात कर दी है।
1: बिल्कुल। और मुझे लगता है रुचिका, जब भी हम अस्पताल जाते हैं, हम सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हम बीमार हैं, हमने
0: जी
1: दवाई लेनी है, डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर जो बोलेगा वो हम पूछ के बात करके वापस आ जाते हैं।
0: जी
1: लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि डॉक्टर से जब हम मिलते हैं तब भी हमारे कुछ अधिकार होते हैं जो हमारी हेल्थ से ही जुड़े हुए हैं।
0: जी तो अब आप हमारे दोस्तों को ये भी बता दीजिए कि ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हमारे दोस्त हॉस्पिटल जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं, चेकअप के लिए जाते हैं, तो वो उन बातों का ध्यान रखें। और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है या कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां उन्हें अपने अधिकारों के अंदर रहकर आवाज उठाने का मौका मिले, तो वो जरूर उठा सकें, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होती है
1: जी बिल्कुल
0: तब तक हम पीछे रह जाते हैं हर एक बेनिफिट से, हर एक चीज से। तो
1: बिल्कुल।
0: जरूर हमारे दोस्तों को बताइए कि किस तरह से क्या क्या अधिकार रहते हैं।
1: देखो रुचिका, जब भी हम बीमार होते हैं, अस्पताल या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं, तो हमारे बहुत सारे अधिकार हैं जो हमें स्वास्थ्य सेवा के दौरान प्राप्त होते हैं। और देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने स्वास्थ्य को विशेष मानवाधिकार का दर्जा दिया है। तो एक स्वस्थ जीवन जीना हम सभी का अधिकार है। और जब हम बीमार होके किसी डॉक्टर के पास जाते हैं मरीज के रूप में, तो हमें सबसे पहला अधिकार तो ये है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, और देखो जब भी हम कहीं जाते हैं ना, तो हमें एक सम्मानजनक जो है बिहेवियर जो है वो हमारे साथ होना चाहिए। हमें कई बार आए सुनने में मिलता है कि हम अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर ने सही ढंग से बात नहीं की, उसने हमें बिना सुने थोड़ी सी बात सुन के हमारी जो है प्रेस्क्रिप्शन उसने दे दी है, हमें हमें समझाया नहीं गया है कि हमारी बीमारी क्या है, किस तरह से हमने दवाइयाँ खानी है। और कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स लिख देते हैं, और कई अक्सर ऐसा होता नहीं है। डॉक्टरी पेशा एक बहुत सम्मानजनक पेशा है, और मैं
0: जी
1: मानती हूँ कि इतने मरीजों को रोज देखना, उनकी देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारी रखना एक डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी देखिए, अतिशयोक्ति होती है, कहीं ना कहीं तो विरोधाभास पाए जाते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि ओवरवर्डन के कारण या किसी भी फ्रस्ट्रेशन के कारण, डॉक्टर्स भी हैं तो इंसान ही,
0: बिल्कुल
1: तो वो मरीज के साथ मिसबिहेव हो सकता है, डॉक्टर ना करे स्टाफ कर सकता है, कोई भी अगर इस तरह का मिसबिहेव करता है तो वो गलत है। एक सम्मान और सम्मानजनक उपचार जो है वो हमारा पहला अधिकार है। जब भी हम अस्पताल में जाएं, हमें बिना लिंग, जाति पाति, रंग भेद के हमारा जो है वो उपचार डॉक्टर को करना चाहिए, ये उसका राइट है। आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, इस तरह का विरोध जो है उपचार के दौरान नहीं होना चाहिए। जो भी मरीज है उसके साथ एक सम्मान अधिकार हमें मिला है। और ये अधिकार जो है, देखिए हमारे संविधान में भी कहा गया है कि सबको समानता का अधिकार है। तो जब भी हम अस्पताल जाएं तो हमें जो है ये अधिकार जो है इसी के अनुसार हमारी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि आप गरीब तबके से आए हो, आप अमीर तबके से आए हो। देखिए हमारे और कंट्री की हम बात करें तो वीआईपी कल्चर बहुत है।
0: जी
1: यहाँ पे अगर कोई वीआईपी मरीज पहले आ जाता है तो एक हम उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देने के चक्कर में क्या है, एक
0: बहुत
1: सीरियस
0: सही
1: मरीज कहीं पड़ा है तो उसको देखना भूल जाते हैं।
0: जी
1: तो ये सब नहीं होना चाहिए। आम मरीज को भी उसी वीआईपी मरीज की तरह ही डॉक्टर को ट्रीट करना चाहिए। और
0: बिल्कुल
1: ये हमारा अधिकार है, अगर हमारे साथ कोई गलत करता है इस तरह से तो हम आवाज उठा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि कोई भी उपचार जब डॉक्टर करता है, मुझे क्या बीमारी है, डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो मुझे बताए मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरी बीमारी की स्थिति क्या है, उसमें जोखिम कितना है, उसको ठीक होने में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये जानकारी डॉक्टर हमें बताए। और और इसमें एक चीज़ और है कि कई बार बाहरी लोग भी हमारे एरिया में आते हैं या हम कहीं बाहर चले गए हैं जहाँ की भाषा हमें समझ में नहीं आती है, तो डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि मरीज को उस भाषा में समझाने की कोशिश करे जो उसको समझ में आती है। और कई बार हमने अक्सर देखा है, हम भी जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो हम डॉक्टर ने लिख दिया उसको, चाहे वायरल ही है, डॉक्टर हमसे पूछते हैं और उसके बाद वो जो भी अपनी दवाइयां हैं वो हमें प्रेस्क्राइब कर देते हैं, हम वो दवाइयां ले लेते हैं, कितने दिन तक खानी है, क्या है, डॉक्टर सारा बता देते हैं हमें। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता हमें बीमारी क्या है। डॉक्टर गए, आपको सर दर्द है, पेट दर्द है, दवाई लिख दी। हमें पता होना चाहिए हमारी बीमारी क्या है, जो भी हमारी बीमारी है अगर हमें वो तकलीफ दे रही है उसका हमें प्रॉपर डायग्नोज होना बहुत जरूरी है। और अगर आप बड़े हैं तो आपको किसी भी बीमारी के इलाज के उपचार को स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का आपको पूरा राइट है। मतलब आप चाहते हैं कि किसी प्रकार की ट्रीटमेंट आपको नहीं चाहिए तो आप डॉक्टर को मना कर सकते हैं, डॉक्टर आपको जबरदस्ती किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट आपको नहीं दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तब भी हम अपनी आवाज जो है वो उठा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप सभी ने जाना, क्योंकि अक्सर हम ये बातें शायद देखते नहीं है तो सुनते तो हैं ही कहीं ना कहीं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, छोटी सी भी बात होती है तो वो बिल्कुल हाईलाइट हो जाती है,
1: बिल्कुल,
0: और सभी तक पहुंच आती है। एक तरह से इसका बेनिफिट भी है लेकिन एक तरह से इसका एक हम कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो इस तरह से अक्सर हम देखते हैं कि जो जो हमारे नॉन होते हैं, क्योंकि स्टाफ तो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा होता है, तो जो नॉन जानने वाले होते हैं उन्हें सबसे पहले आगे कर दिया जाता है, भले ही लोग सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगे रहते हैं, तो उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो जहां हम अधिकारों की बात करते हैं, जहां हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, तो हर किसी का अधिकार है अपने लिए आवाज उठाना, तो वहां पे आप बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत दूर दूर से आए होते हैं और इतनी दूर से कई बार तो टेस्ट करवाने होते हैं तो खाना भी नहीं खाया होता है उन्होंने, तो सुबह से लाइन में लगे होते हैं, लेकिन जो बाद में आ रहे होते हैं कुछ लोग जो कि जान पहचान के होते हैं, तो वो सबसे पहले अपना चेकअप करवाने की कोशिश करते हैं या करवाते हैं।
1: बिल्कुल। तो और ये भी एक देखिए एक तरह से हम बात समानता की करते हैं और यहाँ पे समानता नहीं रह जाती।
0: बिल्कुल।
1: तो ये हमारा अधिकार है। और रुचिका एक और जो मुख्य अधिकार मैं जिसकी बात करूँ वो है गोपनीयता का अधिकार। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी जो है प्राइवेसी जो है, आपकी डिग्निटी है जो है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, जिनका नाम लेते हुए भी हम लोग शर्म महसूस करते हैं। जैसे HIV एड्स की बात करें या घर में कि कोई पेशेंट ऐसा आ जाता है, TV की बीमारी की बात करें, लोग आज भी इन बीमारियों का नाम लेते समय, बात करते समय हिचकते हैं, अपनी बीमारी किसी को नहीं बताते हैं। और कई बार जो मरीज है वो इसी वजह से कि मेरा ये सीक्रेट एक तरह से जो है वो बाहर चला जाएगा, मेरी बीमारी के बारे में सोसाइटी को पता चल जाएगा, मेरी जो सोसाइटी में मुझे अलग थलग कर दिया जाएगा, मेरे परिवार का तिरस्कार होगा, तो ऐसे में जो है मरीज जो है वो अपनी बीमारी का उपचार करने के लिए डॉक्टर्स तक नहीं जाते हैं। तो ये डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी बनती है, उस पूरी स्वास्थ्य टीम की जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर इस तरह का कोई पेशेंट आपके पास आता है या किसी भी स्वास्थ्य सेवा के संबंध में वो आपसे संपर्क करता है तो उसकी गोपनीयता, उसकी डिग्निटी को बचा के रखा जाए, उसके बारे में उसकी निजी जानकारी कहीं पे भी साझा नहीं की जाए।
0: जी बिल्कुल। दोस्तों कई बार यही जो हम एक तरह से कह रहे हैं ना कि गोपनीयता, जब कई बार हम उसे बाहर किसी के भी सामने किसी भेदभाव के नजरिए से या किसी भी तरह से अगर हम किसी को बताते हैं तो कुछ लोग जो अपनी जान इसी वजह से गंवा देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं हमें पता नहीं किस नजर से देखा जाएगा, क्योंकि समाज की आज भी सोच जो है कहीं ना कहीं उस ओर चली ही जाती है। हम कहने को तो कहते हैं कि हम बदलते समय के साथ खुद को बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो बातें हैं, अब जैसे रूमा जी ने अभी कहा कि HIV एड्स की हम बात करें या TV की हम बात करें, तो हम इसे जड़ से खत्म करने के पूरे पूरे प्रयास जो है प्रशासन की तरफ से जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन कमी रह रही है। तो हम लोगों की वजह से
1: बिल्कुल
0: हम डरते हैं, हिचकिचाते हैं और बीमारी का इलाज उस डर के कारण ही नहीं करा पाते हैं, उस बीमारी को हम डॉक्टर तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि शर्म और जो रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज जब कहीं इन्वॉल्व हो जाती है तो हम घबराते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर हमारी भी सोच ऐसी है, जब हमारे सामने कोई HIV एड्स का पेशेंट आ जाता है तो हम सभी हिकारत भरी नजरों से उसको देखते हैं। हमारे चाहे बीमारी का कारण कोई भी रहा हो, हमारे मन में हमेशा उसकी एक नकारात्मक छवि जो है वो बन जाती है। तो अगर इस तरह का कोई भी मरीज आता है, उसके उपचार के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई चिकित्सा परीक्षण होता है, किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट है, तो ये उस मरीज का अधिकार है कि उसकी वो सारी की सारी स्वास्थ्य सेवा से संबंधित जो भी परीक्षण हुए हैं, जो भी जानकारियां हैं, वो गोपनीय रखी जाएं, उसको उस व्यक्ति या उसके परिवार के अलावा किसी भी तीसरे व्यक्ति को ना बताया जाए।
0: जी बिल्कुल, उसके बिना परमिशन के, अगर वो चाहते हैं वो अलग
1: बिल्कुल
0: बात।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अगर वो नहीं

0: चाहते हैं किसी को बताना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी ये एक ड्यूटी है कि आप जो है वो इस बात को गोपनीय रखें और जब जरूरत हो तभी जो है इसे आप लोगों तक
1: बिल्कुल। और उसका ये डॉक्टर की ही जिम्मेदारी या उस चिकित्सा स्टाफ की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी आम जनता की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हम जानते हैं हमारे आसपास इस तरह का कोई मरीज है तो हम उसके बारे में बखान या किसी और से उसके बारे में इस प्रकार की कोई भी बात ना करें।
0: जी बिल्कुल। तो अभी हम और भी बहुत सारी बातें आप सभी के बारे में करने वाले हैं, लेकिन अपनी बातचीत को एक छोटा सा ब्रेक देंगे और आप सभी के साथ फिर से जुड़ेंगे कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान के साथ।

0: दोस्तों, बड़े ही प्यारे से इस गीत के बाद हम फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ भरने के लिए मेरे हौसलों की उड़ान।
1: जी दोस्तों, और आप सभी बहुत ही खास बातचीत आज के कार्यक्रम में सुन रहे हैं कि एक पेशेंट होने के नाते क्या क्या अधिकार जो है हमारे रहते हैं। हर किसी इंसान का अधिकार है, लेकिन एक रोगी के रूप में क्या अधिकार है वो भी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो रूबा जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई दिक्कत हो रही है, कोई बीमारी हमें बहुत परेशान कर रही है, और हम हॉस्पिटल में जाते हैं किसी में भी, और वहाँ टेस्ट करवाते हैं, चेक करवाते हैं, और उसकी रिपोर्ट्स जो है वो डॉक्टर बता देते हैं कि कुछ गंभीर है या कुछ भी है किसी भी तरह से। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक तरह से वो रिपोर्ट हमारे सामने होती है
0: जी बिल्कुल,
1: लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा होता है
0: जी
1: कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। तो उनके मन में एक सवाल उठ रहा होता है कि क्या मैं कहीं और भी एक बार टेस्ट करवाऊं या इन रिपोर्ट्स को चेक करवाऊं।
0: बिल्कुल,
1: तो वहाँ एक उन्हें हिचकिचाहट ये भी रहती है कि अब यहाँ पे करवाई है तो यहाँ डॉक्टर ये कहेंगे कि यहाँ टेस्ट करवा लिए, अब चेकअप नहीं करवाया। तो यहाँ क्या लगता है आपको, या क्या कहना है आपका, कि एक पेशेंट जो है वो सेकेंड ओपिनियन लेने का अधिकार रखता है, कहीं और जो है वो उस बीमारी की जांच परख करवा सकता है?
0: बिल्कुल रुचिका, एक पेशेंट का ये अधिकार है जब भी उसे किसी भी बीमारी के बारे में पता चलता है, हालांकि उसने जिस भी अस्पताल में गया है उन्होंने बहुत अच्छे से उसकी जांच की, उसकी बीमारी के बारे में उसको बताया, लेकिन फिर भी अगर मेरे मन में कोई शंका है तो मैं सेकंड ओपिनियन के लिए या थर्ड ओपिनियन के लिए किसी भी और अस्पताल में जाके, किसी भी और डॉक्टर से जाके उस बीमारी के निदान के बारे में, उसकी गंभीरता के बारे में, उसमें किस किस प्रकार का उपचार शैली है जो सही रहेगी, उसके बारे में मैं जानकारी हासिल करने का हक रखती हूँ। और देखो ना, कोई भी बीमारी है, हर बीमारी का एक अलग ट्रीटमेंट होती है, एक डॉक्टर का अपना तरीका होता है, तो एक मरीज का ये अधिकार है कि डॉक्टर उसको उसकी बीमारी के बारे में उसके पूरे तरीके बताए, किस किस तरीके से उस बीमारी का इलाज हो सकता है, कौन कौन सा खतरा उस इलाज के दौरान हो सकता है। देखो, कई बार हमने सुना है कि कई बीमारी होती है तो अगर इसका हम ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो अगर हम कोई दवाई भी खा रहे हैं, जैसे पैरासीटामोल है या कोई भी पेन किलर ले रहे हैं, तो अक्सर सुनने में आता है कि दवाइयों के मेडिकल जो साइड इफेक्ट होते हैं, और अक्सर हमें बोला भी जाता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई हमें नहीं खानी चाहिए, इसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। तो अगर एक मरीज को उसकी बीमारी के बारे में बताया जाता है, उसके डायग्नोस जो भी हुआ है, उसका किस तरह से उस बीमारी का इलाज किया जाएगा, तो उसके बारे में उसके इलाज के दौरान उसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये जिम्मेदारी बनती है डॉक्टर की उस मरीज को बताना। और अक्सर हमने देखा है जब भी हम सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो हम डॉक्टर से, मुझे नहीं लगता कि हम लोग पूछते हैं कि अगर हम ये दवाई खा रहे हैं तो हमें खान पान का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, तो डॉक्टर की ये भी जिम्मेदारी हो जाती है बताना। क्योंकि देखिए, डॉक्टर को हम भगवान का दूसरा नाम देते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि अगर आपका कोई पेशेंट है, उसको लगता है कि इस खान पान से उसकी बीमारी जो है वो गंभीर हो सकती है, उसको और तकलीफ हो सकती है, तो पेशेंट को ये भी बताया जाए कि उसको किस तरह का खान पान रखना है उपचार के दौरान। और अगर कोई मरीज, उसको शल्य चिकित्सा से जाना है, मान लो उसका ऑपरेशन होना है, तो ये मरीज के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस डॉक्टर से अपना ऑपरेशन करवाना चाहता है या कहीं और करवाना चाहता है, उसके लिए भी वो सेकंड ओपिनियन ले सकता है। कई बार सुनने में आता है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो बोलते हैं हम फलां डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि इमीडिएट ऑपरेशन करवा लो, लेकिन जब हमने दूसरी जगह राय ली तो उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, बीमारी आपकी दवाई से ठीक हो जाएगी। तो ये हमारा अधिकार है कि हम किसी और डॉक्टर से मिलें, क्योंकि देखिए जिंदगी हमारी है, स्वास्थ्य हमारा फर्क पड़ रहा है, तो हमें अपने स्वास्थ्य को लेके इतना सचेत होना जरूरी है कि हम विकल्प के तौर पे या किसी भी और रूप में हम किसी और डॉक्टर से जरूर राय ले लें। और एक चीज और मैं बताऊं रुचिका, कोई भी डॉक्टर आपका जबरदस्ती ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, और जब तक आप वहां पे अपना कंसेंट नहीं देते हैं, आपका परिवार कंसेंट नहीं देता है। आपने अक्सर सुना होगा जब हम अस्पताल में जाते हैं तो सर्जरी से पहले बहुत सारी जो है फॉर्मेलिटीज करवाई जाती हैं, तो एक पेशेंट का और उसके परिवार का ये फर्ज बनता है कि जब भी वो किसी पेपर के ऊपर साइन करवाते हैं, हमारा पेशेंट बीमार है, सीरियस है, तो हम डॉक्टर बोलते हैं यहाँ दस्तखत करो जी, अब इस ट्रीटमेंट के लिए आपकी सहमति की जरूरत है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया है वो सब हमें जानने का अधिकार है। हम डॉक्टर से पूछ सकते हैं या उस स्टाफ से पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं कि हमें क्यों इस तरह के साइन आप करवा रहे हैं और इसमें क्या क्या लिखा है, तो ये हमारा राइट है। और मरीज चाहे तो वो, अगर वो चाहता है कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है तो डॉक्टर उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के काफी सारे जो अधिकार हैं जो हमें मिले हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार भी हैं और ये कानूनी अधिकार ही हैं हमारे। और अगर कोई इन अधिकारों में दखल अंदाजी करता है, कोई छेड़छाड़ करता है, कोई जबरदस्ती हमारी ट्रीटमेंट के साथ या हमारी गोपनीयता का हनन करता है, तो हम, हमारे पास उसके भी उपचार रहते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों, कभी भी हमें, कई बार ऐसा होता है कि हड़बड़ी में जैसा हमें बोले जाता है और उस समय सिचुएशन ऐसी होती है कि हम भावनाओं में बह जाते हैं और समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें क्या ना करें, तो जो मन जो भी बोलते हैं वैसे ही हम कर सकते हैं। तो आज की डेट में बहुत ज्यादा फ्रॉड केसेस भी आप सभी देखते हैं, बहुत ज्यादा फ्रॉड जो है वो फैल रहा है, तो न जाने कब किस तरह से आपको उसका शिकार बनाया जाए। तो कभी भी एक मतलब की सतर्कता की तरफ की हम बात कर रहे हैं, तो चाहे वो हॉस्पिटल है चाहे वो आपका घर है, तो सोच समझदारी के साथ जो है हमें कोई भी स्टेप जो है वो जरूर लेना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें जो है वो फिर हमें फेस करनी पड़ती
0: है। बिल्कुल। अच्छा रुचिका, एक चीज मैं और ध्यान में लाना चाहती हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मरीज के अधिकारों की
1: जी,
0: लेकिन एज ए पेशेंट जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। देखिए, हम सारी जिम्मेदारियां डॉक्टर्स से पे या वहां के प्रबंधन पे नहीं डाल सकते हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी, जब हम अस्पताल में जाते हैं तो देखिए हमारा अधिकार है समानता का अधिकार ना।
1: बिल्कुल।
0: हम बात करते हैं समान अधिकार की, तो जब सभी पेशेंट लाइन में लगे हैं तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी वारी का इंतजार करें। हाँ, कोई गंभीर रोगी आ जाता है, इमरजेंसी आ जाती है किसी भी प्रकार का, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि सबसे पहले हम उस पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर के पास आगे भेजें। और दूसरा, अस्पताल में देखिए कई तरह के मरीज होते हैं, कोई हाइपरटेंशन का मरीज है, कोई किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, वहां अस्पताल में मरीज भर्ती है, बिना मतलब के हम लोग क्या करते हैं, जब खड़े हो जाते हैं तो शोर शराबा करते हैं, अपनी घरेलू बातें डिस्कस कर रहे हैं, राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी लाइन में लग के, तो ऐसे में हमारे पास टाइम पास करने के ये मुद्दे होते हैं। तो वहां पे एक जिम्मेदारी हमारी ये हो जाती है कि हम थोड़ा माहौल को शांत रखें, वातावरण को शांत रखें, ताकि वहाँ जो पहले से एडमिट पेशेंट हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि देखिए डॉक्टर भी इंसान है।
1: बिल्कुल।
0: दिन में 1500 मरीजों से जब वो मिल रहे हैं तो इस शोर शराबे से उनको भी दिक्कत होती है
1: जी।
0: तो उनके काम पे भी फर्क पड़ता है, तो इन सब चीजों का हम ध्यान रखें। और साफ सफाई का ध्यान रखना हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब भी हम कुछ वहां पे खाते हैं, कई बार होता है जूस पी रहा है पेशेंट या कुछ वो कर रहा है, तो इधर उधर वो कचरा ना फैलाएं, क्योंकि देखिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ जीवन शैली का होना भी बहुत जरूरी है, तो ये भी हमारी एक जिम्मेदारी हो जाती है। दूसरा, यदि डॉक्टर हमें नहीं बता पा रहा है व्यस्तता के चलते, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम डॉक्टर से पूछें हमें किस प्रकार की मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएगी, हम जाने किस प्रकार की बीमारी का मुझे साइड इफेक्ट हो सकता है। दूसरा, एक और चीज, अक्सर डॉक्टर जब भी पूछते हैं कि आप पेशेंट, आप भी कभी हॉस्पिटल गई होंगी, तो वो पूछते हैं आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको जानकारी है किसी भी प्रकार की आपको एलर्जी हो रही है किसी मेडिसिन से या किसी खाद्य पदार्थ से, तो आप डॉक्टर को वो जरूर बताएं, क्योंकि हमारे इलाज को जब हम अपनी ये सारी जानकारी डॉक्टर तक बताते हैं तो हमारा इलाज सुगम हो जाता है। दूसरा, पेशेंट को ये भी चाहिए कि वो अपनी कोई भी ऐसी बात ना छुपाए जिससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता हो।
1: बिल्कुल सही कहा है रूमा जी ने दोस्तों, कि ये बात अक्सर होती है कि हम वही हिचकिचाहट या शर्म के वजह से कुछ बीमारियों के बारे में हम बता नहीं पाते हैं, और कोई बीमारी जो बताने, मतलब कि उसमें कोई शर्म महसूस ना हो तो वो बताते हैं, लेकिन कुछ दवाइयां जो है हो सकता है कि आपकी उस बीमारी को इफेक्ट कर जाए। तो कभी भी अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो बीमारी खुलकर बताइए, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो आप खुलकर बता सकते हैं, वो आपका कोई वहां मजाक नहीं बनेगा, कोई आपकी वहां हाईलाइट चीजें नहीं की जाएंगी, क्योंकि हमने गोपनीयता की बात जो है वो पहले ही की है, वो राइट है आपका कि आपकी बीमारी को जो है वो गोपनीय रखा जाए। और साथ ही रूमा जी ने एक और बात कही कि अधिकारों की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ अधिकार ही अधिकार ध्यान में रखे जाएं ये जरूरी नहीं है। हमारी जिम्मेदारियां जो कि बेहद जरूरी हैं हमारी जिंदगी में, जिसके प्रति हम लापरवाही दिखाते हैं या ईगो के चलते जो है उन्हें हानि पहुंचाते हैं
0: जी।
1: तो सफाई की बात की रूमा जी ने, तो अक्सर आप हॉस्पिटल्स में देखेंगे कि लोग यही कहेंगे कि हमारा काम है, हमें एक आराम देने का काम हॉस्पिटल का है, और हम जो भी करें, चाहे खाएं, चाहे जूस पी रहे हैं, चाहे पानी पी रहे हैं, तो बॉटल्स हम वही फेंक देंगे, क्योंकि प्रशासन का काम है, जिनकी ड्यूटी है, जो सफाई कर्मचारी हैं,
0: बिल्कुल
1: वो आके वो चीजें उठाएं।
0: बिल्कुल रुचिका, अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज पेपर में पढ़ा था
1: जी,
0: हमारे यहाँ के एक नामी गिरामी अस्पताल की बात है कि वहाँ दिन में हजारों लोग आते हैं, लेकिन जब हम शौचालय में जाते हैं तो वो गंदगी से अटे पड़े हैं। जहाँ नहाने वाली जगह है वहाँ पे लोगों ने अपने खाने के बर्तन धोए होते हैं, और वहाँ पे जो बचा हुआ खाना होता है वहीं फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल स्टक हो जाता है, और फिर वही पानी, और हम व्यवस्था से शिकायत करते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें कि जो हमारा बचा कुचा खाना है उसको किसी
1: डस्टबिन में
0: डाल दें, या डस्टबिन वहां पे नहीं है तो किसी पन्नी में, किसी लिफाफे में भर लें, बाहर फेंकें। और वॉशरूम में जाके कई बार मैंने देखा है बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपने सैनिटरी पैड या फिर बच्चों के जो पैड्स होते हैं उनको वहां पे फेंक देती हैं, उससे भी स्टक हो जाता है। तो देखिए, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां तो हमारी भी बनती हैं कि हम अपना कचरा खुद समेटें और किसी को भी दोष ना दें, क्योंकि देखिए इतने सारे पेशेंट को देखने के साथ साथ देखिए सफाई कर्मचारी भी हमारे बहुत मेहनत करते हैं,
1: पूरा दिन सुबह से लेकर रात भर, दिन रात,
0: और थोड़ा थोड़ा वो कचरा इतना इतना सा भी, एक एक बूंद भी अगर वहां पे स्टक होता है तो उससे क्या होगा कि वो वॉशरूम जो जो शौचालय हैं वो सारे गंदे हो जाते हैं, और हम जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन को दे देते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यवस्था को हम खुद भी मैनेज करें, औरों को हम ना कहें, हम खुद का कचरा अगर समेटना शुरू कर देंगे तो अस्पतालों में जो अव्यवस्था जो देखने को मिलती है वो कम हो जाएगी, और हमारे जो बीमार और तीमारदार हैं वो इस तरह की असहजता को से बचे रहेंगे।
1: बिल्कुल दोस्तों, अब आपको यही लग रहा होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आप किसी और का कूड़ा कचरा उठाइए, हम सिर्फ इतना ये कह रहे हैं कि आप जो खुद का कचरा फैला रहे हैं बस उसी को मत फैलाइए, उसी को अगर आप डस्टबिन में डाल देते हैं, अगर डस्टबिन नहीं है तो अपने साथ कैरी करिए, और बाहर जब भी आप जा रहे हैं तो उसे बाहर कहीं डस्टबिन में या जैसे भी है कोई सुरक्षित जगह पे, वहां पे आप फेंक सकते हैं, जिससे कि किसी को भी बीमारियों का नुकसान ना हो। क्योंकि हॉस्पिटल में आप सभी जानते हैं, एक तो दवाइयां इतनी ज्यादा पेशेंट्स खा रहे होते हैं, और साथ ही अगर हम प्रदूषण फैलाएंगे, गंद फैलाएंगे, तो मरीजों के लिए और ज्यादा मुश्किल बन जाती है,
0: और मरीजों के साथ साथ तीमारदार भी बीमार हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इस सब चीज का हमें ध्यान रखना ही चाहिए। और रुचिका, अगर हम बात कर रहे हैं अधिकारों की और साथ ही जिम्मेदारियों की, तो जब भी किसी महिला का अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी होती है तो उसका अधिकार है कि वो उसके साथ परिवार का कोई सदस्य वहां पे रहे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार उसके साथ ना हो, और किसी बच्चे का इलाज हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो भी बच्चे के साथ उसके अभिभावक का होना जरूरी है अल्ट्रासाउंड के समय, एक्सरे के समय, ताकि वहां पे आजकल आप देख रहे हैं कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि फलां डॉक्टर ने किसी मरीज के साथ दुर्व्यवहार किया, या बहुत गंभीर किस्म के अपराध भी आजकल दर्ज हो रहे हैं। तो ये एक मरीज का अधिकार है कि जब भी वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है, ऑपरेशन के लिए जाता है, या अल्ट्रासाउंड के लिए जाता है, तो वहां पे उसके साथ उसके परिवार का कोई सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है। और महिला है तो तब तो खास करके ध्यान रखना पड़ता है, और मैंने देखा है कि आजकल डॉक्टर्स भी काफी अलर्ट हो गए हैं इस तरह की बातों को सुनने के बाद।
1: जी बिल्कुल,
0: उनके साथ नर्स खड़ी रहती है जब हम सोनोग्राफी के लिए जाते हैं, या वो परिवार के सदस्य को खुद भी बुला लेते हैं। लेकिन अगर इनकेस अगर ऐसा वहां पे आपको सुविधा नहीं है तो आप डॉक्टर से आग्रह कर सकते हैं कि मेरा परिवार का सदस्य मेरे साथ रहेगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है और अधिकार भी बन जाता है कि हम अपनी सुरक्षा को खुद पुख्ता करें।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही खास बात है ये दोस्तों। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी गलत काम कर सकता है या कोई भी कर रहा है, ये डॉक्टर के ऊपर ही हम सवाल उठा रहे, बिल्कुल भी नहीं। कई बार ऐसा भी होता है रूमा जी कि डॉक्टर अपनी तरफ से बिल्कुल सिक्योरली जो है वो चेकअप कर रहे होते हैं, लेकिन आगे से हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ गलत हुआ या कुछ भी। तो वहां पे अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई दूसरे फीमेल स्टाफ होंगे तो फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उस चीज को, क्योंकि आजकल एक दूसरे पर जो है झूठे आरोप भी बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं।
0: बिल्कुल।

0: और इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हमें खुद ही सतर्क होके इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ कोई ना कोई परिवार का सदस्य ट्रीटमेंट के दौरान जरूर रहे
1: जी, और जिस इससे कि कोई गलत करना चाहे भी तो भी वो गलत ना कर पाए, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, एक छोटी सी गलती से पूरी जिंदगी पर असर पड़ जाता है। तो ये बातें जरूर ध्यान दीजिए, खास तौर पे अपनी जिंदगी से जुड़ी। तो फिलहाल एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान के साथ।

0: तो दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ लेकर कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान।
1: जी दोस्तों, तो आइए इस अपनी प्यारी सी और खास बातचीत को बढ़ाते हैं आगे। और आज की ये खास बातचीत आप सभी सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त रुचिका और
0: रूमा के साथ।
1: जी, तो जैसे कि रूमा जी, हम बात कर रहे हैं कि एक मरीज के क्या अधिकार रहते हैं और क्या जिम्मेदारियां रहती हैं, क्योंकि सिर्फ हम एक ही बात को आगे लेकर नहीं चल सकते। कई बार हम उसका मिसयूज भी कर लेते हैं, नहीं तो हम मिसयूज के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे दोस्तों। सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने जो है एक सही राइट के लिए आवाज उठाना, यही हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो रूमा जी, अक्सर जब अभी हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन अगर माना कि किसी के साथ कोई ऐसे दुर्व्यवहार किया जाता है या किसी के ट्रीटमेंट में कोई चूक हो जाती है, लापरवाही हो जाती है और बाद में उन्हें पता चलता है, तो फिर वो सारा मैशअप सा हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, तो वो जो है मरीज या उसके परिवार वाले वो कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, किस तरह से इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं ताकि वो न्याय की मांग कर सके।
0: बिल्कुल रुचिका, बहुत ही जायज सा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अगर अधिकारों की जिम्मेदारियों की बात करते हैं और कहीं पर हमारे अधिकारों का हनन हो जाता है तो हमें कहाँ आवाज उठानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी 104 नंबर पे हम कॉल करके अपनी किसी भी स्वास्थ्य समस्या से अगर हम जूझ रहे हैं तो हम 104 पे कॉल करके अपनी स्वास्थ्य के संदर्भ में हेल्प मांग सकते हैं। और लेकिन अगर कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की कोताही हो जाती है, लापरवाही हो जाती है, तो वहां पर हम मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसका नंबर लगभग सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम बता दें ये हेल्पलाइन नंबर है 1076। और उसके बाद जो है, जिस भी अस्पताल में हमारी ट्रीटमेंट हो रही है, अगर वहां पे हमारे साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है या चिकित्सा में लापरवाही हो जाती है, तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हम शिकायत लिखित में दे सकते हैं। आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, वो सारी चीज अपनी बीमारी के डायग्नोस से लेके जो भी आपके साथ वहाँ पे ट्रीटमेंट हुई उसके साथ आप लिखित में जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट दे सकते हैं, या फिर आप चीफ मेडिकल ऑफिसर को भी अपनी जो शिकायत है वो दे सकते हैं। और वहाँ पर भी अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो स्टेट मेडिकल काउंसिल में आप उस अस्पताल की, वहाँ के प्रबंधन की या फिर उस डॉक्टर की जिसने भी सेवाओं में लापरवाही करी है उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता है चिकित्सा के दौरान, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप जिला उपभोक्ता न्यायालय में भी अपनी जो एप्लीकेशन है वो खुद या फिर किसी वकील के माध्यम से दायर कर सकते हैं। और अगर ऐसा पाया जाता है कि आपके साथ वाकई में गलत हुआ है, लापरवाही हुई है किसी भी सेवा में, तो वहां से जिला उपभोक्ता न्यायालय से आपको जो भी आपका खर्चा उस चिकित्सा के दौरान आया या जो भी आपका वहां पे नुकसान हुआ है, चाहे जान का नुकसान है या माल का नुकसान है, तो उसकी जो भरपाई है वो उस अस्पताल को करनी पड़ती है। और जिला उपभोक्ता न्यायालय के द्वारा उसका खर्चा भी जो है वो उस संस्थान से आपको दिलवाया जाता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो ये जानकारी हमें जानना बेहद जरूरी है कि जब भी हमारे साथ गलत हो जाता है तो हम किस तरह से अपनी आवाज जो है वो उठा सकते हैं और किस तरह से अपने लिए न्याय जो है वो उसकी मांग कर सकते हैं। तो रूमा जी, बहुत ही खास बातचीत जो है हमने अपने दोस्तों तक पहुंचाई है, और साथ ही एक और खास बातचीत अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहूंगी, एक खास जानकारी कि अगर हमारे दोस्तों को अभी भी कुछ कंफ्यूजन है या इनकेस कुछ प्रॉब्लम आती है इससे जुड़ी हुई और उन्हें नहीं पता है कि हम कैसे आवाज उठाएं या कहाँ जाएं, किस तरह से अपनी हेल्प करें, तो आप उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं या आपके साथ वो कैसे जुड़ सकते हैं उस हेल्प को लेने के लिए, तो वो हमारे दोस्तों को जरूर बताइए।
0: रुचिका जी, हम अपने दोस्तों से जुड़े रहें इसके लिए हम प्रयासरत रहते ही हैं और हर मंगलवार हम यहाँ आ जाते हैं बातें करने। ये इनका जुड़ाव है जो हमें इनके और खींच के ले आता है। लेकिन फिर भी आज के इस जानकारी में जो भी हमने आपके साथ साझा की, अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है या ये भी जानकारी हम तक पहुंचनी चाहिए थी, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 9418431122। आप कभी भी इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या डायरेक्ट कॉल के माध्यम से आप अपनी जो भी जिज्ञासा है उसके लिए हमसे बात कर सकते हैं।
1: जी दोस्तों, अपने सवाल भी आप भेज सकते हैं, अपने सुझाव भी आप भेज सकते हैं, और किस तरह से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी जानते हैं रूमा जी अधिवक्ता के तौर पे जो है धर्मशाला में कार्यरत है, तो आप किसी भी रिलेटेड।
0: बिल्कुल, मैं इस समय जो हूँ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में एज ए लॉ ऑफिसर हूँ। तो जो भी समस्या इस तरह की आपके जीवन में आती है तो आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं।
1: जी दोस्तों, बच्चों से संबंधित, बच्चों से जुड़ी कोई अगर आपको समस्या फेस करनी पड़ रही है और अगर जरूरत है आपको हेल्प की बच्चों से संबंधित, तो आप तब भी रूमा जी से जो है संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और उस समस्या का समाधान जो है आप पा सकते हैं। तो रूमा जी, मुझे लगता है कि अभी समय जो है वो हो गया है अपने दोस्तों से अलविदा लेने का। तो जी दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे थे मेरे हौसलों की उड़ान, और ये बहुत ही प्यारा सा सफर आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और रूमा गुलेरिया जी के साथ। तो दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। अगली कड़ी में फिर होगी आप सभी के साथ मुलाकात एक नई बातचीत, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: मूर्ति सूर्यकांत, रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत के 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 31.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज

अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ जगहों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के समृद्धि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक के उछाल के साथ 76,704 जबकि निफ्टी 69 अंक बढ़कर 23,943 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
2: समझे?
3: माखन की मिठास, मुरली की धुन, जीवन में आपके बरसे खुशियों का जुनून। राधा कृष्ण का प्यार, कन्हैया का नटखटपन, माँ यशोदा का लाड प्यार, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा

आपके परिवार पर हमेशा कान्हा की कृपा बनी रहे। नटखट नंदलाल आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ और शांति लाए, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गोरिया
1: आकर
0: गोरिया गोरिया आकर आ
2: गोरिया
3: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
4: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
5: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
6: कैसे? सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
6: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
12: सुनो, आज बाहर खाना खाने चलते हैं ना?
13: क्यों, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है?
12: नहीं ऐसी बात नहीं है।
13: तो फिर कैसी बात है?
12: वो मेरा आज बर्तन धोने का मन नहीं है।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया है पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

91.2 MHz रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल तहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते रेडियो सेट्स ते

यह रेडियो कुंजन धर्मशाला 91.2 MHz इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

0: क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में दो बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
2: समझे?
3: माखन की मिठास, मुरली की धुन, जीवन में आपके बरसे खुशियों का जुनून। राधा कृष्ण का प्यार, कन्हैया का नटखटपन, माँ यशोदा का लाड प्यार, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा

आपके परिवार पर हमेशा कान्हा की कृपा बनी रहे। नटखट नंदलाल आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ और शांति लाए, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे?
6: कर्तव्य।
5: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सुनो, आज बाहर खाना खाने चलते हैं ना?
12: क्यों, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है?
11: नहीं ऐसी बात नहीं है।
12: तो फिर कैसी बात है?
11: वो मेरा आज बर्तन धोने का मन नहीं है।

क्यानो निश मिला तो मेगा हर्ट्स पर ए है तुम्हा सारे दा अपना रेडियो गुंचन धर्मशाला कहने श्रोताओं मैं या तुम्हा भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक।

0: के बिहारी लाल की।
1: इक्यानवे दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर ये तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

जिन धर्मशाला गणेशोत्सव तोहा कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो सारे इन्हें बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ इस वक्त तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे तुहां सारी इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पन दी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर एए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहां सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

ये तो हमारा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हें बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

शाला कने श्रोताओ, इस वक्त तुहा सारे कार्यक्रम सुना ने माटी दी महक जी श्रोताओ। ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे तुहा सारी इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

शाला कने श्रोताओ, इस वक्त तुहा सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक जी श्रोताओ। ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे तुहा सारी इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

0: हेलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
3: समझे?
4: माखन की मिठास, मुरली की धुन, जीवन में आपके बरसे खुशियों का जुनून। राधा कृष्ण का प्यार, कन्हैया का नटखटपन, माँ यशोदा का लाड प्यार, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम।

आपके परिवार पर हमेशा कान्हा की कृपा बनी रहे। नटखट नंदलाल आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ और शांति लाए, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गोरिया
1: आकर
0: गोरिया गोरिया आकर आ गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे?
6: कर्तव्य।
5: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
12: सुनो, आज बाहर खाना खाने चलते हैं ना?
13: क्यों, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है?
12: नहीं ऐसी बात नहीं है।
13: तो फिर कैसी बात है?
12: वो मेरा आज बर्तन धोने का मन नहीं है।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

0: ये क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरियां होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में दो बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
2: समझे?
3: माखन की मिठास, मुरली की धुन, जीवन में आपके बरसे खुशियों का जुनून। राधा कृष्ण का प्यार, कन्हैया का नटखटपन, माँ यशोदा का लाड प्यार, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा

आपके परिवार पर हमेशा कान्हा की कृपा बनी रहे। नटखट नंदलाल आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ और शांति लाए, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे?
6: कर्तव्य।
5: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सुनो, आज बाहर खाना खाने चलते हैं ना?
12: क्यों, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है?
11: नहीं ऐसी बात नहीं है।
12: तो फिर कैसी बात है?
11: वो मेरा आज बर्तन धोने का मन नहीं है।

नमस्कार श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर टी वेडी गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम लेकर आऊं सचिन कपूर हाजिर भुजगो हिंदी अपनी गप्पा। तैयार श्रोताओं, शुरुआत कर लेंदन कार्यक्रम रे इस प्यारे दे गीता होगी।

0: तो है सभी ये ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर आऊँ सचिन कपूर हाजिर हो चुका। सभी पहले था सभी जो बड़ा बड़ा नमस्ते या प्यारा प्यारा नमस्ते या और जन्माष्टमी आज आना चाहिए था। हरे कृष्णा टू ऑल, हरे कृष्णा राधा राधा। बिल्कुल इस अवसर पर किया सो तुसु सभी जो बहुत बहुत बधाई बुन जन्माष्टमी रे हार्दिक बधाई बुन। इन द श्रोतागण शायद हंसू के कनेक्ट भी बुझ गया हिन मौके फिर हूँ अपने श्रोता जो किया सो जन्माष्टमी री बधाई देना चाहता हा और होप सो तो ये सब ये किए सो आज रात भी किए जरूर रख रो अपना है ना। और ऐसा श्री कृष्ण जन्माष्टमी रा व्रत भी तो है जरूर रख रो अपना है और इन द श्रोता करना सो गए बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। बारी बारी सभी री फरमाइश सो जरूर पूरी करनी। सभी पहले टीका चते नौडरानी मंदिर थो इन दी फरमाइश थे करमचंद जी री काना गीत के सो हुन्ना हा तिन्या सो जरूर तिन्या है हुन ले आगाज तस्सी गीत हो गई किया माफ करो सो जरूर कर ले छो तो या इन द श्रोतागण के अनुसार हो गए कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं और कड़ी थम बोल रहे हैं?
1: हम करण मजदूर बगाड़े हूं।
0: करण बोल रहे हैं बगाड़े थू।
1: हां जी
0: करण जी ठीक ठाक ना?
1: हां जी
0: कर कर लग रहे हैं
1: करण ना।
0: अच्छा क्या करो था आज तो है पूरा दिन छुट्टी थे आज तू सो स्कूल था हूँ क्या करो मिलो आज
1: आज छुट्टी स्कूल का रही। हाँ हेलो।
0: हाँ जी हाँ जी आज छुट्टी थे स्कूल ला रही मुझे पता ताए ताऊ बहुत चुंदा क्या करो आज दर्शन दर्शन करे कृष्ण भगवान जी रे
1: राज आगे ओ वे करम बना हुआ के अंदर दिया था
0: डर लगता है। चलो ठीक है जी जरूर तू सो गीत सुन ले है।
1: जी
0: नमस्ते। अखला मनु खुदला पानी हो डर लगता जरूर छो तो इस गीतार आनंद किया सो जरूर है सब ले ले। लेकिन करमचंद जी री जो फरमाइश है सो भी असु जरूर पूरी किया सो करने हैं और सोगे आज जितने भी आज फरमाइश है ली आज बिल्कुल जो कि छुट्टी वाला दैड़ा और इन बहुत सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो बाकी जितने भी इन देख अलग अलग फील्ड में जो जॉब करते सो सब के न सो बिल्कुल घरे बुने था आज कॉल्स के न सो ज़्यादा इनी हिन और हिची सकती हिन ऐसी उम्मीद है। बहरहाल इन अगले श्रोता जो कनेक्ट कर दे। नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते कौन बोल रहे हैं और कड़ी थूँ?
2: नमस्ते
0: तुसु अभी जी बड़ी बड़ी मुबारक हूँ
2: जन्माष्टमी मुबारक मुबारक।
0: हाँ जी हाँ जी तुसु भी मेलो बड़ी बड़ी मुबारक हूँ जी जन्माष्टमी री। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी अम्मा जी ठीक ठाक राजी बाजी
2: अपने
0: बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हाँ जी आऊ ठीक है जी बिल्कुल ठीक आऊ।
2: मम्मी भी ठीक है?
0: हाँ जी हाँ जी मम्मी भी ठीक ने जी
2: ठीक पिंडे बच्चे ठीक पिंडे
0: सर जी बिल्कुल बिल्कुल। और
2: तो बस पैसे में गाना जरमा सीधा गाना सुना दिया था

0: अच्छा जी, जरूर है गीत होने ले जी। आज तो पूरा भक्ति में
1: हाँ,
0: अंदर है सुडूबना
1: बड़ा बड़ा धन्यवाद।
0: जी। तुम भी धन्यवाद है जी, कार्यक्रम जो प्यार
1: ठीक
0: देने वास्ते।
1: है, नमस्ते
0: नमस्ते
1: बच्चे, ठीक है।
0: जी। और हम हमेशा बोलते कि इंदे सियाने के न सोइंदी धरोहर हिन, है ना। और इन्हें थोए बाग किया सो बाग बगीचे के न सो इन्हें थोए खेल दे इन्हें थोए बन दे हिन शो तो, है ना। ता कोशिश करू करा कि इन्हें जो किया भी कस भी हालत में किया सो खुश रखू करा, है ना। फिलहाल आइए जी, करमचंद जी री फरमाइश में है पहला काना रा गीत किया सो आए हुन लेन देन। और हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आक मौके फिरी राधे राधे।

ছোট এফএম ব্যান্ড কেন দিশাম লাভে দুই মেগা হিটস পর রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা তো হে সবই টিউন কর আর টিউন কর তো আপনা রেডিও গুঞ্জন আর সচিন কাপুর হাই সময় বিলকুল লাইভ তুন্দে সবই রেডিও সেট মা তা ইন্দি কোশিশ হমেশা বেন দে কে হে সবই রি ফরমাইশা জো কিয়া সো পুরা করন শোতো আর কুছ ফরমাইশা গেন সো বিলকুল কল রে জরিয়ে ভি গেন শোতো সো ইন্দি হিন আর अक्सर क्या सो असू हेरना भी पैंती कि कॉल रे जरिए क्या हिंदी ने सो भी असू जांचना पैंती ने परखना पैंती ने और फिर इतारे हिसाब हो गए कि टाइमिंग रे हिसाब हो गए कि असो असू गीत ब्रॉडकास्ट करना पैंता है इन शो तो अक और फरमाइश आया गल सुन मेरी गोवा उचे अकलासा है ना यानी कि जो टाइटल हा इस गीत रहा सोहा मड़िया रहा जोगी ईशान भारद्वाज द्वारा गीत गायक चूरा हा शो और फरमाइश छोरे अकुरे जो कि ने नोटरानी मंदिर थो ही निवास कर देन माता रहे चरना मंच निवास कर देन है सब और चौंका मंच तैयार है घर उनुंजा पंजा तैयारी गड्डी रहा नंबर आ और अपनी सेवाएं क्या ना सो बिल्कुल भरपूर दिन दहिन सेवाएं दिन दिन भाग सुनाग में लेकिन चलिए तैयारी फरमाइश में भी एक गीता है ज़रूर पूरा कर ले शो तो आख मौके फिर तुस सभी जो जन्माष्टमी रही बहुत बहुत शुभकामनाएं है फेसबुक रे जरिए भी कैन सो लाइव चले आए न और तो सब श्रोता सो के जुड़ सकते हैं 7088879 पर कृष्णा मेरिया सुना देना सचिन जी इंदू फ्रॉम सिद्धबाड़ी जी इंदू जी ज़रूर तुम्हारी फरमाइश भी है जरूर पूरी कर ले। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री विष्णु रे अठवें अवतार श्री कृष्ण रे जन्मोत्सव रे रूप में किया सो मनाओ करते हैं आज है सब श्रोतों कजो कि इसी पवित्र तिथि पर किया सो द्वापर युग में किया सो त्यारा जन्म मथुरा रे कारागार में हुआ थो श्रोतों जे क्या है सब बाखूबी जानते हैं जठेरा मुख्य उद्देश्य थो त्यारा जन्म लेने रा मुख्य जो उद्देश्य थो श्रोतों सो तो पृथ्वी थो यह धरती थो किया सो अधर्म अन्याय और पाप जो नष्ट करना पाप रा नाश करी करी धर्म रिपुन स्थापना करना थो और श्रोतों एक गल बिल्कुल इंदे गरुण पुराण में भी लिख रही है गीता में भी लिख रही है श्रोता हूँ कि जहने जहने किया सो अधर्म बढ़ुआ जहने जहने अन्याय बढ़ुआ जहने जहने पाप बढ़ुआ तहने तहने किया सो भगवान जरूर अपने कसकी नगस की रूप में किया सो जरूर इन दे हिंद श्रोतम श्री कृष्ण जन्माष्टमी है कौ मनंदन ऐसा वह है बखूबी जानते हिंद श्रोतों इतिहास ऐतिहासिक चीज़ें भी है जानते हिंद है ना श्री कृष्ण जन्माष्टमी सनातन धर्म रे सब थो बड़े और उलस मतलब इतना भरपूर इतना असु सब इतने ऐह सब इतने उत्साहित बुंदे ने इस त्यौहार जो मनाने वास्ते है मुझे लगता है सनातन धर्म रा हर एक व्यक्ति की असु बहुत उत्साहित बुंदा होना अजगने इस त्यौहार जो मनाने वास्ते है ना जी भद्रपद मास रे कृष्ण पक्ष भी अष्टमी तिथि वे रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म किया श्रोताओं से हुआ तो इसी दिन जो मनाने वा सब तो मोटा कारण ये है कि भगवान कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक महापुरुष नहीं बल्कि सोपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रा अवतार मनिगन दहिन त्यारे प्रकट भूणे थो उद्देश्य संपूर्ण मानवता जो जीवन रा जीवन में के सो सही मार्ग दसना है जब जब जहने जहने श्रोतों पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म बढ़ुआ तहने तहने ईश्वर कसी न कसी रूपा माँ के आसो यह धरती पर आह भगवान कृष्ण जीरा अवतारन इस दिव्य संकल्प रा परिणाम हा बराल इंदे श्रोतागण बिल्कुल छुट्टे में दसुदा इंदे श्रोता बहुत सारे आज कनेक्ट भूणे हिन कनेक्टेड हिन इंदे फेसबुक रे जरिए भी सो असू कमेंट इच्छू करते हैं अश्वनी सुकेतिया जी लिखो करते हैं सचिन जी जय श्री कृष्णा जी बिल्कुल जय श्री कृष्णा जी सभी जो और नमस्ते तभी ठीक है आज सुनील भाई बिल्कुल ठीक है तबीयत बस तुसु आए दसो तो क्या है बिना मंदे ना ना जिन तक जान है तिन तक रह बिना मंदे तबीयत आज थोड़ा बेटर फील किया सो करू करता है और आज मैसेज बड़े चुगर दे राधे राधे राधे राधे जी सभी जो राधे राधे या
हरे कृष्णा हक मौके फिरी और आइए जेबे फरमाइश रहा दौर के सोवे धीरे धीरे पूरा कर दे हिन और लेकर ही चल दे तू सब भी श्रोता जो अकूरी हिस फरमाइश श्री और।

चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में अपनी गप्पा तो सब लाइव होने कर देना आरजे सचिन कपूर सो के और हमें लेकर चल दे श्रोताओं तो सो कुछ एक खास जानकारी दी और हिमाचल रहे सभी विधायिका जो कि अब फ्लैग यानी कि एक विशिष्ट झंडे की ऐसा मोलने हैं श्रोताओं। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की ऐसा मानसून सत्र आखिरी दिन में गए जानकारी देते हैं श्रोताओं। एक हफ्ते रहे भीतर सभी लम्बे जो भी MLA हैं है ना जी, इड़ी छपुरा गलता सभी MLA जो कि ऐसा विधानसभा सचिवालय प्रशासन द्वारा विशेष झंडी जारी करने हैं श्रोताओं। जी बिल्कुल, MLA भी गड्डी पर के ऐसो लगाएगा नहीं है। मानसून सेशन समाप्त भुंदे भुने थो बाद श्रोताओं स्पीकर की ऐसो मीडिया थो बातचीत कर दे बल्लुआ के 13वें विधानसभा में के ऐसो डिस्ट्रिक्ट फ्लैग रा फैसला के ऐसो ले हुआ श्रोताओं, मगर तबे फैसला लागू ना हुआ थू ना कर सके थी है तिन्या इस फैसले जो लागू करने व निर्णय की सोले हुआ कुलदीप पठानिया की बल्लो अशोतों की इस व्यवस्था व उद्देश्य की सो विधायिका जो अलग पहचान देना है, खासकर नए विधायक जो जितने भी नए विधायक बने के ने इन्या जो इस सुविधा के सो मोलने हैं और तिन्या अपनी पहचान दसना पैने हैं बता तीनों अपनी पहचान के सो दसने पेंदे है मतलब है ना। लेकिन जहाँ फ्लैग किया सो मोलेगा ना तो फ्लैग मिलने थो बाद किया सो तो सो विधायक जो अपनी पहचान ना दसना पैने हाँ, खासकर तहने जहाँ प्रदेश थो बाहर गिच गरे प्रदेश थो बाहर जहाँ के विधायक गंदे हैं। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की सो तो ऐसो बल्लो हा कि विधायक भी गड्डी

भी मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव रीता रागिया स्वाक फ्लैग लगना है। न्याय बल्लो शोतों की डिस्ट्रिक्ट फ्लैग थो विधायक जो अलग अधिकारी का पहचान के सो मोलने आ और बाहर गाने पर बार बार अपनी पहचान स्पष्ट करने की जरूरत ना पैने हाँ। इतों बाद विधायक जो अपनी पहचान दसने भी किया सो नौबत ना ही नहीं हाँ शोतों। चलिए जी विधायक साहब जो लगनी है वे झंडी जितने भी विधायक हैं जस जस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी रे विधायक ने तीन सब भी हो कि ऐसो झंडी लग गई भाई साहब अब विधायक जो कि ऐसो अपनी पहचान की ऐसो करखा जड़ी भी नाका भुआ या कुछ इस प्रकार रे चेकिंग भुआ या ने कस की स्टेट मगन देन तो तड़ी की ऐसो ना दसना पैने लेकिन इन दे श्रोता के ना सो बिल्कुल लसू कॉल करूँ करते हैं जनाब तो है भी जुड़ी सकते हैं 7 08 8 1 1 7 0 9 1 पर नंबर आख मौके फिर हम शेयर करनू हाँ 7 08 8 1 1 7 0 9 1 पर। चलिए चलते ना और दो ही बोल के इन सो कनाल रणचीरी आवास में जरूर हूँ लेंदन पखला मणो खुदला पानी और डर।

0: रेडी गुंजन धर्मशाला और हम सचिन कपूर है श्रोतो इस वक्त बिल्कुल लाइव कार्यक्रम तो सब हूँ कर देने अपने अपने रेडियो सेट में 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोटा मोटा स्वागत है मौके फिर सभी होने आ रहा सभी श्रोतागण रहा। चलिए थोड़ा करिए और के श्रोतो सो है आजकने इस प्यारे दे दिन आ रहे बारे किया सो जाने लेंदे हिन लेकिन इन दे श्रोता के सो असो के कनेक्टेड हिन पुछ दिन कुंड वल्लू देन और हाँ माफ करा डिसकनेक्ट के अनसो बोझे के छुंदा है श्रोता ता श्रोतो भगवान श्री कृष्ण रे जन्म रे पृष्ठभूमि अत्याचार और भय रे वातावरण तो जुड़ रही हा श्रोतो जुड़ रहे थे है ना जिनके सब बाखूबी जानते हैं। बहरहाल श्रोता असुखी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी। हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी
1: नमस्कार
0: अजी वीडियो गुंजन मा तो है कर फोन करो आओ तू सो मुझे होल्ड करी देता। हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी वीडियो गुंजन मा स्वागत है जी। कौन बोल लूं देन और कड़ी थो बोल लूं देन
1: स्मायरा बोल स्मायरा बोल कर दिया
0: स्मायरा।
1: हाँ जी
0: स्मायरा जी कड़ी बोल लूं देन
1: मोली
0: मोली थो। अच्छा स्माइल जी क्या फरमाइश है तुंदे
1: जली तेरी बांसुरी गाना।
0: अच्छा ये तुंदे फरमाइश है कि कसकी हो रही रे फरमाइश है
1: मेरी।
0: अच्छा स्माइल जी कस स्कूल पर दिन तो है
1: बाक्समर पब्लिक हाई स्कूल मोली के आ रहा।
0: अच्छा बड़े अच्छा और बड़े अच्छे वातावरण में स्कूल है बड़ा प्यारा लगता मुझे एरिया रहा जो एरिया सो। चलिए जरूर तुसु एक गीत होने ले है ना जी।
1: ओके
0: ठीक है जी नमस्ते धन्यवाद
1: थैंक यू
0: जी। तो ये शो तो है तुसु लेकर चल रही थी है। हाँ भगवान कृष्ण रे जन्म रे जो पुष्ट भूमि अत्याचार और भय रे वातावरण थो जुड़ रहे हैं जी क्या है जानते भी हिन शो तो मथुरा रे राजा कंस है क्या सो अपने ही पिता जो मारी करी और गद्दी थो हटाई करी की शो तो सो अपने आप जो राजा घोषित करी देता थो सो अत्यंत क्रूर तथा पापी थो शो तो कंस है ना। और भविष्यवाणी भोई श्रोता हूँ कि कंस री बहनी देवकी की आ सो अठमा पुत्र जहने भूणा हा तो अठमा पुत्र की आ सो कंस रा वध करना हा इस भय था हूँ कंस किया सो देवकी रे पति जो यानी कि वासुदेव जो किया सो कारागार मा पाई दिता और अक अक कर दे किया सो शुरुआती संताना री हत्या किया सो करी दिते अपने इस भविष्यवाणी तो अपने इस डर तो।
1: हेलो
0: हेलो
1: नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते जी
1: खरे न।
0: हाँ जी खरे न जी कौन बोलूं देन और कड़ी तो बोलूं देन
1: आओ बाग नहीं तो बोलूं कर दा तो मेरा नाम जतिन है।
0: अच्छा जतिन जी कौन दिने गीत उड़ना क्या फरमाइश है तुंदी।
1: मेरी फरमाइश हरी
0: केलंग बजीर। केलंग बजीर रख कोई गीत होना तो सुहाना जी।
1: हाँ जी
0: ठीक है जतिन जी धन्यवाद जरूर होने ले
1: थैंक यू
0: जी। तो ये शो तो ता वासुदेव किया वासुदेव और देवकी जो कि अश्वतों सो कारागार में पाई देता और आका कर दे किया सो त्यारे शुरुआती संतान रे हत्या किया सो करी देती मतलब कंस के अश्वतों सो इतना ज़्यादा किया सो मतलब तो सोची ले शायद मुंजोले सो शब्द घट पेगा ना कि कंस है किया सो कस क्रूरता होगी किया कितना पापी थे सो कितनी अपनी बहनी अपने भांजे के नसों कितने मरवाई दिता है शोतों है ना जैन शोतों पलदे ने काल के इंदा सो चली इंदा जो लिखुरा सो भूणा भूणा जो भविष्यवाणी सोता सत्य भूणे भूणे थे शोतों जैन भद्रपद मारे कृष्ण पक्ष री अष्टमी आए तहने आधी रात जो घनघोर बरखा लग रही थी, जिनके है वीडियो रे माध्यम तो हेरदे बिन बड़े तेज तरार किया सो बरखा पियो रही थी श्रोताओं। और अंधकार रे बिच तूने अंधेरे मंच अंधेरे रे बिच किया सो भगवान कृष्ण रा जन्म हुआ श्रोताओं। उसी क्षण देवी चमत्कार तो कारागार रा ताला खुली गो श्रोताओं। और वासुदेव जी ये किया सो नवजात शिशु कृष्ण जो यमुना पार करी दिता, यमुना पार कर गोकुल में किया श्रोताओं। सो नंद बाबा और यशोदा मैया रे तड़ी किया सो सुरक्षित पुजाई दिता श्रोताओं। जन्माष्टमी रा ये प्रसंग असु ऐसे खंदा श्रोताओं कि कितनी भी विकट परिस्थिति को न भून, कितनी भी विकाल परिस्थिति को न भून, सत्य और अन्याय, सत्य और न्याय भी विजय के आसो निश्चित बुंदे है। जाए कितने ही विकाल परिस्थिति को न भून, कितनी ही विकट परिस्थिति को न भून, श्रोताओं सत्य और न्याय रे किया सो हमेशा विजय भुंदे हा, विजय बछोरे भी आ और हगुम भी विजय किया सो सुनिश्चित भूणे ही भूणे हा। श्रोताओं अंधकार कितना भी गहरा को ना भोआ, श्रोताओं कितना भी मुट्टा को ना भोआ, अंधकार जो चीरने वास्ते किया सो अक दिए भी लो किया सो काफ़ी बुंदे हा श्रोताओं, है ना, सो बहुत काफ़ी बुंदे हा। बहरहाल कार्यक्रम में जानकारी सिलसिला के सोए चले रहना हाँ शो तो मौके फिर तुसु सभी जोग जी हरे कृष्णा राधे राधे और बने रे आरजे सचिन कपूर सोगे लेके चलते फरमाइश सारी और कृष्ण भगवान जी रा गुणगान ताज बनदा ही बनदा शो तो बिल्कुल गुणगान करु कर देना है। और भगवान श्री कृष्ण जी के ना सो आसू पर अपना आशीर्वाद यहीं बनाए करे रखना।

शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला है और हम सचिन कपूर इस समय कार्यक्रम जो होस्ट करू करता तुंदे सभी रे रेडियो सेट में आइए जी कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं शोतों और अगली जानकारी तू होगी शेयर करते हैं साझा करते हैं। प्रदेश में के शोतों सो दो दिन बरखारा येलो अलर्ट है और इस वक्त लगभग 95 सड़का के न सुबंध प्यूरिन हिमाचल प्रदेश में शोतों प्रदेश में मानसून है के सो अक मौके फिर लगुंदा की मनुरी मुश्किल है के असो बढ़ाई देती हैं। बिल्कुल शोतो हाँ शिमला सहित प्रदेश में कई हिस्से में के असो मूसलाधार बरखा होए बरखा रे कारण कई जगह भूस्खलन और सड़क पर मलबा चले आशोतो इतों यातायात प्रभावित हुआ शोतो बिजली और पेयजल आपूर्ति पर भी के असो असर प्यो शोतो मौसम विभाग है क्या जो मौसम विभाग है मौसम डिपार्टमेंट है जो तिनिए की है शो तो सो पांच यानी कि दत्ते तक 5 सितंबर तक के सो प्रदेश में कई स्थान पर भारी बरखा रे चेतावनी की असो जारी करी है। 6 अथों 9 सितंबर तक भी बरखा रे आसार हिन हालांकि इन्या दिना मंच कोई चेतावनी नहीं है 6 अथों 9 की है सो कोई ऐसी चेतावनी नहीं है कोई ऐसी चेतावनी की इस जारी नहीं है शोतों। और राज्य वह त्राई जिला मन सिरमौर कांगड़ा और हमीरपुर में येलो अलर्ट जारी है शोतों। और इसी सो की शोतों 5 सितंबर जो बिलासपुर कांगड़ा और सोलन में भारी बरखा रहा येलो अलर्ट जारी है शोतों। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और अन्य कारणों 95 सड़का के न सो बंद हिन शोतों 43 ट्रांसफार्म और 35 पेयजल योजनाएं बंद हिन शोतों। बिलासपुर रे नैना देवी में के असो 130.6 मिलीमीटर बरखा बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्से में अच्छी बरखा किया सो दर्ज हुए है शोतों। तो ये जानकारी तो है सब हुण कर देना आरजे सचिन कपूर सो की बिल्कुल लाइव ये जानकारी है। आइए कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और फरमाइश और दौर के सो पूरा कर देन बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सो की गूंज अपने पन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रहे।

श्रोतो तो सब बन रहे ने समय 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गया और आऊँ सचिन कपूर है समय कार्यक्रम जो होस्ट करू करता तुम दे सभी रहे रेडियो सेट में आइए जी कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और बिल्कुल इस की तरह आनंद बेगे सो लेंदे हैं श्रोतो इतों बाद जो फरमाइशन सो है ज़रूर पूरी कर ले मने रिया आर जे सचिन कपूर सो गी गूंज अपने पन रही

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रोर कार्यक्रम में इस वक्त हिंदी अपनी का पगन है सो चल रही हैं। चलिए जी कार्यक्रम जो थोड़ा करी और हगू बढ़ंदे हिन और किलिंग बजीर जीरा गीत किया सो अकिंदे श्रोता थी है तिन्या किया सो हुन्ना गीत तो चलिए जरूर हुन ले हुनंदे हिन बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे आयुषो तो आनंद लेंदे कार्यक्रम रा इस प्यारे दे गीता सोगे तो ये सब इस समय बन रहे हैं आर जे सचिन कपूर सोगे 91.2 MHz पर कार्यक्रम में जानकारी रा सिलसिला किया सोए चले रहना है जानकारी रा पिटारा किया श्रोताओं सोए यहीं खुलते रहना है।

चलिए श्रोतो, तो अब इजाज़त दे अपने आरजे सचिन कपूर जो 6 बजे फिर मिलते हैं गुड इवनिंग धर्मशाला मंच और कुछ अन्य जानकारी लेकर ही। और फिलहाल मौके फ्री तुसु सभी जो हरे कृष्णा, कदी कसी रे बुरा मत करा श्रोताओं, कदी कसी रे बारे बुरा मत सोचा, हर कसी रे खरा करने की कोशिश करा, जो ज़रूरतमंद है त्यारी मदद करने की कोशिश ज़रूर करा, यह प्रकृति जो कि असो ठेस ना पहुँचा हत्ता जोड़े करे आरजे सचिन कपूर तुसु अगो विनती करता हा सियाने रे सेवा के असो जरूर करा, माता पिता री सेवा की असो जरूर करो और अपनी औरतों का सिरा बुरा मत करा, अपना हगूरा रास्ता किया सो खराब मत करा, कसरा भी बुरा चाहे करे और बुरा करे करे। इन्या शब्द था सचिन कपूर ले लेनो इजाजत, नमस्ते धर्मशाला।

की हेडलाइंस पे। हिमाचल में अब विधायकों की गाड़ियों में लगेगी विशेष झंडी। हिमाचल में बनेगा अलग खनन विभाग। नई ड्रेन नीति लाएगी प्रदेश सरकार। प्रदेश के 26 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार, स्कूलों के 21, कॉलेजों के 5 होंगे सम्मानित। कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द मिलेगा एरियर। पशुओं को दी जा रही एक्सपायरी दवाएं। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधायकों की गाड़ियों पर डिस्टिंक्ट फ्लैग, विशेष पहचान झंडी लगेगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस व्यवस्था को लागू करने की मंजूरी दे दी है। विधानसभा सचिवालय एक सप्ताह में सभी विधायकों को विशेष पहचान झंडी जारी करेगा। 13वीं विधानसभा के दौरान विधायकों को डिस्टिंक्ट फ्लैग देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन किसी कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। अब इस निर्णय को प्रभावी किया जा रहा है। पठानिया ने कहा कि डिस्टिंक्ट फ्लैग लगाने का मुख्य उद्देश्य विधायकों को अलग आधिकारिक पहचान देना है। उन्होंने बताया कि कई बार विशेष कार्यक्रम में जाने पर विधायकों की गाड़ियां जाम में फंस जाती थी, वहीं विधायकों को अपनी पहचान तक बतानी पड़ती है। विशेषकर प्रदेश से बाहर जाने के दौरान ऐसी स्थिति सामने आती है। फ्लैग लगने के बाद उनकी गाड़ी देखकर ही विधायक की पहचान हो सकेगी। हिमाचल प्रदेश की नदियों में जमा रेत, बजरी और गाद केवल पर्यावरणीय चुनौती नहीं, बल्कि हजारों करोड़ की संभावित अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गए हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि नदियों में खनन और ड्रेजिंग को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित किया जाए तो प्रदेश को सालाना करीब 3,000 करोड़ तक का राजस्व मिल सकता है। उन्होंने प्रदेश में अलग से खनन विभाग बनाने और नई ड्रेजिंग नीति लाने की भी घोषणा की। हिमाचल में संसाधन कहीं अधिक हैं। इनके वैज्ञानिक और व्यवस्थित दोहन से प्रदेश आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी छलांग लगा सकता है। कहा, वर्तमान में खनन कार्य उद्योग विभाग के माइनिंग विंग के माध्यम से संचालित हो रहा है। काम का दायरा बढ़ने के कारण स्वतंत्र माइनिंग विभाग बनाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। केंद्र से अनुमति मिलने के बाद कुल्लू में 3 साइटों पर ड्रेजिंग शुरू करवाई गई। हिमाचल के उन शिक्षकों का मान बढ़ने जा रहा है जिन्होंने चौक और ब्लैक बोर्ड से आगे बढ़कर हजारों विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ा। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के राज्य शिक्षक पुरस्कारों के लिए 26 शिक्षकों के नाम तय कर दिए हैं। इनमें स्कूलों के 21 और कॉलेजों के 5 शिक्षक शामिल हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर लोक भवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू इन शिक्षकों को सम्मानित करें। चयनित स्कूल शिक्षकों में 15 को सामान्य और 6 को विशेष पुरस्कार मिलेगा। तकनीकी शिक्षा के 5 शिक्षक और पिछले वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कर चुके एक स्कूल शिक्षक को भी राज्य सम्मान दिया जाएगा। 51 शिक्षकों के साक्षात्कार और प्रस्तुतिकरण के बाद शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने 26 नाम पर अंतिम मोहर लगाई है। पुरस्कार के लिए चयनित 21 स्कूल शिक्षकों में 15 को सामान्य पुरस्कार और 6 को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। सामान्य पुरस्कार गैर जनजातीय बाय कठिन क्षेत्र श्रेणी में और विशेष पुरस्कार भी गैर जनजातीय बाय कठिन क्षेत्र श्रेणी में प्रदान किए जाएंगे। विधानसभा मॉनसून सत्र के अंतिम दिन कर्मचारियों के डीए एरियर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष बीच काफी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के विधायकों ने सरकार से कई सवाल दागे, जिसका मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार जल्द डीए व एरियर देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल आर्थिक चुनौतियों से लड़ा है, लेकिन सरकार ने कर्मचारी व पेंशनर्स पर आर्थिक संकट नहीं आने दिया। सीएम ने कहा कि सरकार ने 67 वर्ष तक के सभी पेंशनर्स का पूरा एरियर, जिसमें मेडिकल बिल, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकेशमेंट सभी देनदारियां दे दी हैं। उन्होंने कहा कि क्लास 4 कर्मचारियों की पूरी देनदारियां व एरियर सरकार दे चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित एरियर के भुगतान को लेकर कहा है कि एरियर का भुगतान किसी के दबाव में आकर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से एरियर का भुगतान किया जा रहा है और आगे भी परिस्थितियों के अनुसार कर्मचारियों व पेंशनर्स को उनका बकाया दिया जाएगा। हिमाचल के कई सरकारी विभागों में अनियमितताएं और खामियां पाई गई हैं। विधानसभा मॉनसून सत्र के अंतिम दिन प्रस्तुत की गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में पशुपालन, ग्रामीण विकास मनरेगा, कारागार व सुधारात्मक सेवाएं और लोक निर्माण विभाग में गंभीर खामियां उजागर की गई हैं।
कैग ने राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि जेलों में सुरक्षा व चिकित्सा

कर्मचारियों की कमी को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। ग्रामीण विकास विभाग में जॉब कार्ड और मजदूरी भुगतान में होने वाली देरी को रोकने के लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाए। पशुपालन विभाग में दवाओं की खरीद के लिए ऑनलाइन इन्वेंट्री प्रबंधन सिस्टम लागू करने की सख्त आवश्यकता जताई गई है, ताकि एक्सपायरी दवाओं के वितरण को रोका जा सके। मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए तैयार की गई कैग रिपोर्ट मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में रखी। पशुपालन विभाग में दवाओं की खरीद और वितरण में भारी लापरवाही सामने आई है। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किया जा रहा है। ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने शताब्दी वर्ष के तहत 100 ईयर्स में 100 इनिशिएटिव्स थीम के साथ विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा की है। ये जानकारी ओएसए के अध्यक्ष संजीव गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। शताब्दी समारोह के तहत जिला प्रशासन कांगड़ा और रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से 50 रुपये प्रति टिकट की लकी ड्रॉ योजना भी शुरू की गई है। इसमें कुल 100 पुरस्कार रखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश के 16 होटलियर्स द्वारा चंबा, मनाली, शिमला, मंडी, धर्मशाला, पालमपुर, बीड़, कसौली और चैल सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर 2 रात और 3 दिन के 32 स्टे पैकेज प्रायोजित किए गए हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल, लैपटॉप, मोबाइल फोन और वॉशिंग मशीन समेत कई आकर्षक पुरस्कार भी शामिल हैं। संजीव गांधी ने बताया कि लकी ड्रॉ से प्राप्त पूरी राशि रेड क्रॉस सोसाइटी को दी जाएगी। इस राशि का उपयोग कैंसर पीड़ितों तथा आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 13 से 15 नवंबर तक शताब्दी समारोह के मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

उफ़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

सभी ने ट्यून किया है 91.92 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से का

कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी का मैं नाची सचिन कपूर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माफ़ कीजिएगा, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है, होप सो आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप सभी श्रोताओं को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, हरे कृष्णा टू ऑल, राधे राधे राधे राधे टू ऑल। चलिए, कार्यक्रम में बहुत सी जानकारियां हैं और बहुत सी जानकारियां जो है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत मुख्य रूप से श्रोताओं आप सभी ने जो है वो ज़रूर रखा होगा, है ना जी। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के रूप में जो है, बर्थडे के रूप में जो है वो, जन्मदिन के रूप में जो है वो मनाई जाती है। माफ़ करें श्रोताओं, फिलहाल कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, आगाज़ करेंगे कार्यक्रम का इस प्यारे से भजन के साथ, और उसके बाद रूबरू होते हैं आप सभी के साथ।

14 FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं आरजे सचिन कपूर आपके साथ फिर से उपस्थित हुआ हूँ। जी बिल्कुल, लगता है कोई याद कर रहा था जिस वजह से हिचकियाँ जो है वो आ रही हैं। मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने बड़े भाई का, जो हमेशा जब भी हमें कुछ भी बाहर की अपडेट लेनी हो या धर्मशाला से जुड़ी कोई भी, धर्मशाला कौन सी एजेंसी से जुड़ी कोई भी अपडेट या कोई भी ऐसी सूचना जो है वो हमें लेनी हो तुरंत, तो हम अपने बड़े भाई शुभम सूद जी को हमेशा जो है वो याद करते हैं। और अभी भी उन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर राय जो है वो अपनी रखी थी कि आप इलायची खाएँ या पानी पिए, उस वजह से जो आपकी हिचकियाँ हैं ताकि बंद हो जाए। तो धन्यवाद बड़े भाई का, आपका साथ आपका प्यार 2006 से हम ऐसे ही देखते आ रहे हैं और बहुत अच्छे वॉलीबॉल प्लेयर हैं, हजार बार हम बता चुके हैं और बार बार जब भी आपका जिक्र होगा हम ज़रूर आपकी खूबियां जो है वो बताएंगे। और भी बहुत सी खूबियां हैं लेकिन फ़िलहाल मंच कुछ अलग है, लेके चलेंगे आप सभी को श्रोतों। जैसे कि मैंने बताया श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार की श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में जो है वो मनाई जाती है श्रोताओं, क्योंकि इसी पवित्र तिथि पर द्वारपर युग में उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था श्रोताओं, जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से अधर्म अन्याय और पाप का नाश करके धर्म का पुनः स्थापना करना था श्रोताओं, धर्म को फिर से पुनः स्थापित जो है वो करना था श्रोताओं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी सनातन धर्म के सबसे बड़े और उल्लासपूर्ण त्योहारों में से एक है। भद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था श्रोताओं। इसी दिन को मनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि भगवान कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक महापुरुष नहीं है बल्कि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का अवतार जो है वो माना गया है श्रोताओं। उनके प्रकट होने का उद्देश्य संपूर्ण मानवता को जीवन का सही मार्ग दिखाना था श्रोताओं। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर जो है वो किसी न किसी रूप में इस धरती पर आते हैं श्रोताओं। भगवान कृष्ण का अवतरण इसी दिव्य संकल्प का जो है वो परिणाम भी है श्रोताओं और प्रमाण भी है, है ना जी। जब जब अत्याचार होता है, जब जब पापी बढ़ते हैं तब तब पापियों का नाश करने के लिए जो है वो बिल्कुल भगवान आते हैं श्रोताओं। अब सभी को मैं बताना चाहता हूँ श्रोताओं, जब भद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई तब क्या हुआ था, वो रात हम सबको याद है क्योंकि हम जब छोटे होते थे तब हमने टीवी चैनल पर जो है वो भी देखा है, सीरियल्स में जो है वो भी देखा है। अब सभी को फिर से एक बार वो दौर में याद दिलाना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण के जन्म की पृष्ठभूमि अत्याचार और भय के वातावरण से जो है श्रोताओं वो जुड़ी हुई थी। मथुरा के राजा कंस ने अपने ही पिता को गद्दी से हटाकर खुद को राजा घोषित कर दिया था श्रोताओं। वह अत्यंत क्रूर तथा पापी था। भविष्यवाणी हुई थी कि कंस की बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस भय से कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में जो है वो डाल दिया तथा उनके एक एक करके शुरुआती संतानों की हत्या जो है श्रोताओं वो कर दी। जब भद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई तब आधी रात को घनघोर वर्षा और अंधकार के बीच जो है वो भगवान कृष्ण जी ने जन्म लिया श्रोताओं, उनका जन्म हुआ। उसी क्षण दिव्य चमत्कार से कारागार के ताले खुल गए श्रोताओं और वासुदेव जी ने जो है वो नवजात शिशु को कृष्ण को यमुना पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ सुरक्षित पहुँचा दिया। जन्माष्टमी का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि कितनी भी विकट परिस्थितियाँ क्यों ना हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, सत्य और अन्याय की विजय निश्चित है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंधकार कितना भी कड़ा गहरा क्यों ना हो श्रोताओं, एक दिए की लौ जो है वो उसे चीरने के लिए काफ़ी होती है, उस अंधकार को बुझाने के लिए जो है वो काफ़ी होती है।
कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। श्रोतों, आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए लेते हैं एक बार फिर से कृष्ण भगवान जी का नाम। हरे कृष्णा टू ऑल।

FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं नाची सचिन कपूर आप सभी के वीडियो सेट में बिल्कुल हाजिर हूँ लाइव कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर। आइए जी, कार्यक्रम में इसी तरह से भक्ति संगीत जो है वो ज़रूर चलेंगे श्रोताओं, क्योंकि आज खास दिन है। हम सभी बाखूबी जानते हैं कि आज जन्माष्टमी है और हमारी बहुत सी माताओं ने, बहनों ने, इवन कि भाइयों ने जो है वो आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर जो है, इस शुभ अवसर पर जो है वो व्रत भी जो है वो ज़रूर रखा होगा, है ना जी। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो जन्माष्टमी की। तो लेकर चलते हैं कुछ एक खास जानकारियों की ओर, आप सभी को रूबरू करवाते हैं श्रोताओं। प्रदेश में दो दिन बारिश का येलो अलर्ट जो है वो बिल्कुल है। मॉनसून जो है वो आप ये ना सोचे कि चला गया, अभी यही है मॉनसून। आप बताना चाहते हैं श्रोताओं, जानकारी के साथ रूबरू करवाते हैं आपको। प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर से जो है वो लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं श्रोताओं। शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में जो है वो मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन हुआ और सड़कों पर मलबा आ गिरा श्रोताओं। इससे यातायात भी प्रभावित हुआ, जैसे कि होता आ रहा है। बिजली और पेयजल आपूर्ति भी उन पर भी जो है वो असर पड़ा। इन डिपार्टमेंट्स में भी जो है वो काफ़ी असर पड़ा श्रोताओं। मौसम विभाग ने जो है वो कल यानी कि 5 सितंबर तक प्रदेश में कई स्थानों पर जो है वो भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 6 से 9 सितंबर तक भी बारिश जो है वो बताई है, बारिश के आसार जो है वो बताए गए हैं श्रोताओं। हालांकि इन दिनों 6 से 9 जो है वो इन दिनों में जो है वो कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है श्रोताओं, यानी कि कोई चेतावनी नहीं है। बताना चाहते हैं श्रोताओं की राज्य के 3 ज़िलों में सिरमौर, कांगड़ा और हमीरपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 5 सितंबर को बिलासपुर, कांगड़ा और सोलन में भारी बारिश का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है श्रोताओं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार मैं बात करूँ तो प्रदेश में भूस्खलन और अन्य कारणों से लगभग 90 से ज़्यादा सड़कें जो हैं वो बंद हैं श्रोताओं। 43 बिजली ट्रांसफार्म और 35 पेयजल योजनाएं जो हैं वो बंद है। बिलासपुर के नैना देवी में 130.6 मिलीमीटर बारिश बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। जानकारियां यूं ही चलती रहेंगी। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन की गूंज के साथ यूं ही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा।

होप सो श्रोतो, आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला को आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे, और ये नाचीज सचिन कपूर जो है वो कार्यक्रम को होस्ट कर रहा है। गुड इवनिंग धर्मशाला इस कार्यक्रम का नाम है। श्रोतो होप सो आप सभी अन्य जानकारियों के साथ रूबरू हो रहे होंगे, और साथ ही साथ आज जो हमारा विशेष दिन है श्रोतो, जी बिल्कुल, इसे भी हम सभी जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे, और कृष्ण भगवान जी की भक्ति में जो है वो हम सभी लीन हैं इस समय, क्योंकि इस प्रकार के गीत जो है, इस प्रकार के भक्ति में गीत जो है वो इस समय चले हुए हैं। श्रोतों आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ खास जानकारियां आपके साथ और रूबरू करवाते हैं। इन खास जानकारियों के साथ आप सभी को हिमालय राज्यों में ग्लेशियर झील फटने और हिमस्खलन के होने वाली तबाही को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। श्रोतों केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नई दिल्ली में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिवों तथा आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में संवेदनशील ग्लेशियर झील और हिमस्खलन वाले क्षेत्रों की लगातार निगरानी, खतरे की पहले सूचना देने और समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने पर विशेष जोर जो है वो दिया गया है। याद रखिए हमारा हिमाचल प्रदेश भी जो है उसका नाम भी आया है श्रोतों, और अगर सरकार इस बात की चिंता कर रही है तो मतलब खतरा हम सभी को भी है। बताना चाहता हूँ श्रोतों आप सभी को, बैठक में खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करने के साथ ही ये तय करने के निर्देश दिए गए हैं कि अचानक पानी आने की स्थिति में उसका बहाव किन रास्तों से हो सकता है, गुजर सकता है। साथ ही चेतावनी मिलने के बाद उसे गांव और बस्तियों तक तुरंत पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत की जाए। जिला प्रशासन, राज्य की एजेंसी और वैज्ञानिक संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि आपदा आने के बाद बचाव कार्य करने के बजाय पहले से खतरे को समझकर तैयारी करना जरूरी है। श्रोतों इसके लिए संवेदनशील ग्लेशियर झीलों और हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जाए। निकास वर्ग, बचाव संसाधन और स्थानीय स्तर पर लोगों की तैयारी को समय समय पर जांचा जाए। उन्होंने वर्ष 2024 में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी ग्लेशियर झील आपदा रोकथाम परियोजना को तेजी से लागू करने के भी निर्देश जो हैं वो दिए हैं। श्रोतों जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा, आप सभी बने रहिएगा आरजे सचिन कपूर के साथ गूंज अपने बन की, और गूंज आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं की। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से एक और गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने इस समय ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं, और ये लाइव कार्यक्रम बिल्कुल आपके वीडियो सेट पर चला हुआ है। श्रोतम, भगवान कृष्ण के जन्म का सबसे प्रमुख कारण गीता में उनके द्वारा बताए गए श्लोक से स्पष्ट होता है श्रोतों, जहाँ उन्होंने कहा है कि साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, पापियों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में प्रकट होता हूँ। कृष्ण ने अपने जीवन काल में कंस, शिशुपाल जैसे दविंदों अंत, दुश्मनों का अंत किया, और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर जो है वो संपूर्ण विश्व को जो है श्रोताओं वो संदेश भी दिया कि पापियों का अंत जो है वो निश्चित रूप से है ही। और श्रोताओं, आज की डेट में अगर हम बात करें तो हम भी अपने कर्मों को जो है वो कहीं ना कहीं कुछ कंस की तरह ही बना रहे हैं। हम लोग जो है वो एक दूसरे की बुराई करते हैं, हम लोग जो है वो हमेशा अपने ही एटीट्यूड में हम कह सकते हैं कि रहते हैं, है ना। कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब हमारे कर्म जो हैं, हमारी वजह से किसी का दिल दुख रहा है श्रोतों, तो ये सब हमारे कर्म जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, और हमारे कर्मों की सज़ा जो है वो हम सभी बाखूबी जानते हैं कि मिलती ज़रूर है। इसलिए श्रोताओं, अपने कर्मों को बेहतर बनाने के लिए जो है आगे के कर्मों को खासकर मैं कहना चाहूँगा श्रोताओं की, जो हमारे आगे के कर्म हैं, यानी कि इस चोले को, ये जो जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, इस चोले को छोड़ने के बाद जो है वो जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे श्रोताओं, तो वहाँ पर जो है वो मेन दिक्कत आ सकती है। इसलिए अपने कर्मों को, अपने आगे के रास्ते को जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा ज़रूर रखें।

शो तो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने जो है वो ट्यून किया है और मैं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर हूँ गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम को इस समय होस्ट कर रहा हूँ। बखूबी आप सभी जो है वो अन्य जानकारियों के साथ रूबरू हो रहे हैं। साथ ही साथ श्रोतों आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। चलिए कुछ एक और खास जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते स्को स्थित ओपन शेल्टर होम में जो है वो अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद जो है वो 16 वर्षीय बच्ची की टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान जो है श्रोताओं वो मौत हो गई। आरती ने बुधवार सुबह दम तोड़ दिया। बच्ची का नाम आरती था श्रोताओं, उन्होंने सुबह के समय जो है वो दम तोड़ दिया। श्रोतों पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने मौत को लेकर किसी तरह का संदेह या साजिश होने से इनकार किया है। ज्वाली तहसील के भाली गांव के निवासी मजदूर गोरखराम की बेटी आरती का बचपन संघर्ष में बीता। श्रोतों करीब 13 वर्ष पहले बीमारी के कारण माँ आशा देवी का निधन हो गया था। इसके बाद आरती और उसके दो बहनें उसकी पूजा व नीतू का पालन पोषण गरली स्थित बालिकी आश्रम में हुआ। श्रोतों तीनों बहनें करीब 12 वर्ष आश्रम में रही और वर्ष 2024 में घर लौटी थी। वर्ष 2025 में बड़ी बहन पूजा की शादी होने के बाद वह दोनों छोटी बहनों को अपने साथ संसारपुर ले गई। श्रोतों पुलिस को दिए बयान में पिता ने बताया कि जून जुलाई में आरती बहन के घर से वापस पिता के पास जो है वो आ गई थी। 24 अगस्त को जो है वो उसे स्को स्थित ओपन शेल्टर होम में छोड़ा गया। वहां अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। पहले उसे धर्मशाला में उपचार दिलाया गया लेकिन हालत गंभीर होने पर 1 सितंबर की रात को जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पिता भी अस्पताल पहुँच गए थे श्रोतों बुधवार की सुबह उपचार के दौरान जो है वो आरती की मौत हो गई। सूचना मिलने पर टांडा पुलिस चौकी की टीम अस्पताल पहुंची। पोस्टमार्टम और अन्य कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मौत के कारणों की जांच के लिए जो है वो अंगों को सुरक्षित रख लिया श्रोतों। और उधर ASP कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने जो है वो खबर की पुष्टि की श्रोतों। तो आइए कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा। जानकारियों का पिटारा जो है श्रोतों वो यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज के साथ और ये खास जानकारियां जो है वो ये नाचीज सचिन कपूर आप तक पहुँचा रहा है। आइए लेके चलते हैं और इस प्यारे से गीत का आनंद लेते हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला से।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतो और अगली जानकारी के साथ आपको तुरंत रूबरू करवाते हैं। ये जानकारियों का पिटारा सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। राज्य में नशे के बाजार का दायरा जो है श्रोताओं वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। सरकार नशे पर जितनी तेजी से लगाम कस रही है उतनी ही तेजी से इसका विस्तार भी जो है वो होता जा रहा है। श्रोताओं यहाँ पर नशे का करोड़ों का व्यापार और नोट बटोरने का लालच जो है वो आम सामाजिक तत्व ही नहीं बल्कि श्रोताओं नौजवान युवा को जो है वो भी ख़राब कर रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ 50% से अधिक युवा अपनी डोज को पूरा करने के लिए जो है वो इस गंदे धंधे में कूद रहे हैं। श्रोताओं 3 महीने के मामलों पर अगर मैं नज़र डालूँ श्रोताओं और तो इस धंधे में चर्स को मात देकर जो है वो चुट्टा अब बादशाह बन चुका है। श्रोताओं ज़िला कुल्लू में नशे के 33 मामलों में 17 मामले चिट्टे के हैं। जी बिल्कुल श्रोताओं और इस तरह 3 महीने में 50% से अधिक चिट्टे के मामले हो गए हैं। युवतियां सहित महिलाएं भी इस नशे में शामिल है, इस चुंगल में जो है, इस दलदल में जो है वो, इस दरिया में जो है वो डूब चुकी हैं। इस नशे के दलदल से जो है वो युवा पीढ़ी को निकालना पुलिस प्रशासन और सरकार को काफ़ी मुश्किल सा हो गया है श्रोताओं। यदि कदम कदम पर जनता खुद इसके खिलाफ

कदम नहीं उठाएगी और कूदेगी नहीं शतों, तो इसके सार्थक परिणाम की उम्मीद जो है वो की जा रही है, की जा सकती है शतों, अगर जनता साथ दे तो। 3 महीने में ज़िला कुल्लू में 51 लोगों की गिरफ्तारी की गई है शतों, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। इस साल 8 महीने में 8 को ही जो है वो 8 महीने में 8 लोगों को ही जो है वो सलाखों के पीछे धकेला है शतों। विभिन्न विभागों के सरकारी और निजी संस्थानों के कर्मचारियों और अधिकारियों के इस धंधे में शामिल होने की बात आज भी देवभूमि कहलाए जाने वाले राज्य देश के अंदर शर्मसार जो है वो हुआ है शतों। वहीं जून 2026 में 15 मामले और 21 15 मामले में 21 पुरुष 1 महिला, जुलाई में 9 मामलों में 16 पुरुष 2 महिला, अगस्त में 9 मामलों में 10 पुरुष और 1 महिला की गिरफ्तारी जो है वो हुई है। यानी कि श्रोताओं, साधारण शब्दों में मैं कहूँ तो चिट्टा जो है वो कहीं ना कहीं इस समय हिमाचल प्रदेश में घर कर चुका है, हर गली हर मोहल्ले में जो है वो चिट्टा फैल चुका है, और आज का युवा इस चिट्टे का उपयोग जो है वो करने के लिए इस धंधे में कूद भी रहा है। जी बिल्कुल श्रोताओं, और चरस को भी चिट्टे ने जो है वो मात दे दी है। कहते हैं हर देश की रीढ़ की हड्डी जो है वो यूथ होता है, युवा होता है, लेकिन अगर इस लाचारी के साथ यूथ और चिट्टे के नशे में पड़ेगा, चर्स के चंगुल में पड़ेगा, तो फिर यूथ कहाँ रहा? फिर तो कहीं ना कहीं वो यूथ, वो देश, वो प्रदेश डूबता नज़र आता है श्रोतों, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है वो युवा होता है, और आने वाले भविष्य में क्या कुछ होगा वो युवा कहीं ना कहीं तय करता है श्रोतों। लेकिन अगर आज का हमारा ये युवा इस प्रकार रहेगा और इस प्रकार से नशे के चंगुल में आकर अपने आप को बर्बाद करेगा, अपने परिवार को बर्बाद करेगा, तो कहानी कुछ और ही बयां करेगी और जीवन मुश्किल होता जाएगा।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोतो 7 बज चुके हैं शाम के, अब वक्त हो गया है रेडियो गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरल में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमूला वल्ला सद्यक इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।

सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय परिसर में परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधा और केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला में उन्नत उपकरण सुविधा का उद्घाटन किया। इस सुविधा से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और संबंधित क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की विश्लेषण और अनुसंधान क्षमताएं बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने कड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की जोड़ी को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में दो बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि
3: स्वस्थ मुंह है सेहत।

91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने अपने वीडियो सेट पर। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कार्यक्रम में। श्रोतो, हिमाचल में अब विधायकों की गाड़ियों में लगेगी विशेष झंडी। जी बिल्कुल श्रोतो, ये जानकारियां हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। कुछ एक हेडलाइंस आप तक पहुंचाते हैं। प्रदेश के 26 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार, स्कूलों के 21, कॉलेजों के 5 होंगे सम्मानित। श्रोतो, पशुओं को दी जा रही है श्रोतो दवाइयाँ। जी बिल्कुल, धर्मशाला कॉलेज के शताब्दी वर्ष पर 13 से 15 नवंबर तक होंगे कार्यक्रम, ये जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। श्रोतों, महाविद्यालय धर्मशाला के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किया जा रहा है। श्रोतों, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ने शताब्दी वर्ष के तहत 100 ईयर्स में जो है वो 100 थोड़ा सा हाँ एक थीम जो है वो थीम रखी गई है। श्रोतों, विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा की है। श्रोतों, ये जानकारी जो है वो ओएसए के अध्यक्ष संजीव गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी है। शताब्दी समारोह के तहत जिला प्रशासन कांगड़ा और रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से 50 रुपये प्रति टिकट की लकी ड्रॉ योजना भी शुरू की गई है। श्रोतों, इसमें कुल 100 पुरस्कार रखे गए हैं। श्रोतों, हिमाचल प्रदेश के 100 होटलियर्स द्वारा चंबा, मनाली, शिमला, मंडी, धर्मशाला, पालमपुर, बीड, कसौली सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों में 2 रातें और 3 दिन के 32-स्टे पैकेज परियोजित जो है वो किए गए हैं। श्रोतों, जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा। श्रोतों, आइए लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को, हाँ बिल्कुल सभी श्रोताओं को इस प्यारी से गीत की ओर।

0: शोतो एफएम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं सचिन कपूर हूँ इस समय कार्यक्रम को होस्ट कर रहा हूँ। शोतो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला पारिवारिक न्यायालय के न्यायालय ने वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में पत्नी को अतिरिम भरण पोषण के तौर पर जो है वो हर महीने 10,000 रुपये देने के आदेश दिए हैं। प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने ये आदेश सुनाए हैं। श्रोतों मामले के अनुसार दोनों पक्षों का विवाह 25 सितंबर 2023 को हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। श्रोतों पत्नी ने अतिरिम भरण पोषण के लिए 15,000 रुपये प्रतिमाह देने की मांग की थी। उसने अदालत में दावा किया है कि उसके पास वर्तमान में आय का कोई साधन नहीं है और वह अपने पिता पर निर्भर है। वहीं पति ने दावा किया था कि पत्नी नौकरी कर रही है और 50,000 रुपये से अधिक प्रतिमाह कमा रही है। अदालत के समक्ष दोनों पक्षों ने अपनी अपनी संपत्ति और देनदारियों का शपथ पत्र भी प्रस्तुत जो है वो किया। श्रोतों पत्नी ने अपनी मासिक आय 0 बताई जबकि पति ने अपनी मासिक आय 48,840 रुपये और करीब लगभग 40,000 रुपये मासिक खर्च बताया। अदालत ने कहा कि पत्नी की नौकरी करने और अन्य आरोप प्रतिरोप से जुड़े विवाद का इस स्तर पर अंतिम फैसला नहीं किया जा सकता। अदालत ने उपलब्ध रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पत्नी को 10,000 रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण की हकदार माना। श्रोताओं पति को ये राशि आवेदन दाखिल करने की तारीख से देने के आदेश दिए हैं। श्रोताओं बकाया राशि 6 महीने के भीतर चुकानी होगी जबकि भविष्य की राशि प्रत्येक माह 10 तारीख तक जो है वो देनी होगी। तो ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, पिटारा यूं ही खुलता रहेगा।
1: पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारे
0: बने रहेगा आरजे सचिन कपूर के साथ गूंज अपने पन की।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो सुन रहे हैं बखूबी। एक कार्यक्रम जो है वो आप सभी के वीडियो सेट पर जो है वो चल रहा है। श्रोतों कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे जो है वो बढ़ाते हैं और इसी प्रकार से श्रोतों जिस प्रकार से हम जानकारियां देते हैं उसी प्रकार से जो है वो जानकारियों का पिटारा फिर खोलते हैं। और श्रोतों ये बहुत विशेष और हम सभी के लिए लाभदायक ये जानकारी है जो मैं अक्सर अपने लाइव में कहता हूँ कि पर्यावरण को जो है वो दूषित ना करें, प्लास्टिक जो है वो ना फैलाएं। श्रोतों जितना हो सकता है अपनी ओर से पेड़ पौधे ज़रूर लगाएँ। श्रोतों हर किसी का भला जो है वो ज़रूर करें। ये कुछ अच्छी आदतें, ये कुछ अच्छी बातें जो हैं वो हमें अपने अंदर ढाल लेनी चाहिए। देखिए जीवन बहुत अनमोल है, हम सभी जानते हैं। हम सभी अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी नौकरियां कर रहे हैं, है ना। और ये जीवन की सच्चाई है जो आप सभी तक मैं पहुंचा रहा हूं। देखिए अभी नौकरी कर रहे हैं, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, फिर उनका पालन पोषण करेंगे, है ना। माँ बाप की सेवा तो करनी ही चाहिए और ये सब चीज़ें, और इसी में हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब श्रोतों क्यों ना, हमें पता तो है कि ये चोला हमें एक दिन छोड़ना है, तो क्यों ना जाते जाते हम आने वाली जनरेशन को भी कुछ अच्छा देकर जाएं, कुछ बेहतरीन देकर जाएं, उन्हें भी ये लगे कि वाकई में ये हिमाचल है। और हिमाचल किस लिए जाना जाता है ये सभी हम बखूबी जानते हैं। ये ऊंची ऊंची धौलाधार श्रृंखले, ये पर्वत, धौलाधार की ये वादियाँ, यहाँ पर देवी देवताओं का जो स्थान है श्रोतों, ये बहुत मायने रखता है हम सभी हिमाचलियों के लिए। और साथ ही यहाँ की ग्रीनरी श्रोतों, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा अहम है यहाँ की ग्रीनरी श्रोतों, है ना। तो ग्रीनरी तभी बनी रहेगी श्रोतों जब तक हम जो हैं वो उसे बाखूबी बना कर रखेंगे, है ना। चलिए कार्यक्रम को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से

0: तो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और श्रोता वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं श्रोताओं अंतराल के बाद।
1: जी।

0: है क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
2: समझे?
3: माखन की मिठास, मुरली की धुन, जीवन में आपके बरसे खुशियों का जुनून। राधा कृष्ण का प्यार, कन्हैया का नटखटपन, माँ यशोदा का लाड प्यार, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा

आपके परिवार पर हमेशा कान्हा की कृपा बनी रहे। नटखट नंदलाल आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ और शांति लाए, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गोरिया आ
1: गोरिया आ करा
0: गोरिया आ
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे
6: कर्तव्य?
5: अरे सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सुनो, आज बाहर खाना खाने चलते हैं ना?
12: क्यों, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है?
11: नहीं ऐसी बात नहीं है।
12: तो फिर कैसी बात है?
11: वो मेरा आज बर्तन धोने का मन नहीं है।

0: श्रोतम एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और 7:45 हो चुके हैं। श्रोतम वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: सुरक्षा व रख रखाव के लिए विधानसभा में पारित संशोधन विधेयक से आम लोगों को मिलेगी सुविधा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुसार कैग रिपोर्ट से बेनकाब हुआ राज्य सरकार का व्यवस्था परिवर्तन। वित्तीय कुप्रबंधन की खुली पोल। और चंबा जिला में प्रसिद्ध मणि महेश यात्रा शुरू। पहले दिन आज सैकड़ों श्रद्धालुओं ने डल झील में लगाई आस्था की डुबकी। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कैन उर्वरक उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन व उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया है, जिसमें सेब उत्पादकों को राहत प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। रोहित ठाकुर ने बताया कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन उर्वरक उपलब्ध न होने से सेब उत्पादकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेब उद्योग से हर वर्ष करीब 6,000 करोड़ रुपए का योगदान होता है और सेब बागीचों के लिए कैन उर्वरक एक भरोसेमंद और किफायती स्रोत है। रोहित ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से उर्वरक निर्माताओं को कैन के उत्पादन और इसकी उपलब्धता जल्द सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया है। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में स्थित भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और भजन कीर्तनों से सारा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। शिमला के गंज बाजार में श्री राधा कृष्ण मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर शीश नवाया। श्री सनातन धर्म सभा शिमला के प्रचार मंत्री सुमन पाल दत्ता ने बताया कि आज रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान लोग कान्हा के भजनों पर झूम उठे।
2: पूरे शहर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया। 3 चौक 3 दिन मंदिर में सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए हमने हुशियारपुर से, यमुनानगर से और बिलासपुर से बहुत सारी जगह से सब महात्मा बुलाए हैं। लंबी लंबी कतारों में सुबह 6 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं।

0: उधर सोलन में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। सोलन के श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कार्यक्रमों में भाग लिया। आज रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाए।
1: इस दिन सभी लोग बड़े धूमधाम से उल्लास से व्रत रखते हैं, भगवान कृष्ण की तरह तरह से पूजा पाठ करते हैं, मंदिर आते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, नृत्य करते हैं।
2: आज हमारे हरि मंदिर में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। रात को 12 बजे इनका जन्म होगा, उसके बाद भोग प्रसाद और सारा भाव बहुत है ठाकुर जी के लिए। हमें राधा रानी की पूरी कृपा है।
3: वैसे रोज इस मंदिर आते हैं, पर आज कुछ अलग ही उल्लास है हमें यहाँ पे आने का। इसी तरह सभी देशवासी खुश रहे व ठाकुर जी का जन्मदिन मनाए।
0: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित विधान हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 सड़क सुरक्षा व रखरखाव की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने आज शिमला में कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य आम जनता और विभागीय अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, जल निकासी संरचनाओं और अन्य सड़क अवसंरचना की तत्काल बहाली का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति से मुरम्मत का खर्च और जुर्माने की राशि भी वसूल की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सड़क किनारे निर्माण व अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो सकेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट में राज्य सरकार का व्यवस्था परिवर्तन बेनकाब हुआ है और इस रिपोर्ट ने सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की पोल खोल दी है। आज शिमला से जारी एक बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि कैग रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में राजस्व व राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और राज्य सरकार ने बिना बजट के ही 438 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टेंडरिंग और टैक्स वसूली सहित अन्य कई क्षेत्रों में राज्य सरकार की नाकामी सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार के हर कदम से कुछ गिने चुने लोगों को लाभ हो रहा है, जबकि प्रदेश लगातार नुकसान में जा रहा है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद।
4: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
5: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
4: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। चंबा जिला की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के साथ शुरू हो गई है। पहले दिन आज हजारों श्रद्धालुओं ने 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र डल झील में आस्था की डुबकी लगाई और कैलाश पर्वत के दर्शन किए। मणिमहेश पहुंचने के लिए यात्रियों को 13 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ा, जबकि कई श्रद्धालु हेलीटैक्सी के माध्यम से भी मणिमहेश पहुंचे। मणिमहेश यात्रा 29 सितंबर को राधाष्टमी के दिन संपन्न होगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
6: भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था लिए देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु हर वर्ष मणिमहेश पहुंचते हैं। कई मन्नत पूरी होने पर तो कई मन्नत लेकर इस कठिन सफर को तय करते हैं। 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर जब श्रद्धालु समुद्र तल से 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश डल झील तक पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने पर एक अलग सी अनुभूति होती है। रास्ते में जय भोले का जय जयकार करते हुए भगत जन अपनी इस यात्रा को संपन्न कर वापस अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि हिमाचल में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा व अनुसंधान संस्थान का एक्सटेंशन सेंटर स्थापित करने पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने ये मामला जेपी नड्डा के साथ प्रमुखता से उठाया था। अनुराग ठाकुर ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इससे स्वास्थ्य व दवा आपूर्ति श्रृंखला में हिमाचल की भूमिका अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 650 से अधिक फॉर्मुलेशन इकाइयां कार्यरत हैं और इनका वार्षिक कारोबार 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। एनसीसी की छात्राओं का एक दल इन दिनों किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला की ट्रैकिंग अभियान पर है। इस दल ने 24 अगस्त को किन्नौर जिला के काफनू से अपना ट्रैकिंग अभियान शुरू किया और 10 दिनों में 60 किलोमीटर का कठिन सफर तय कर ये लड़कियां स्पीति उपमंडल के मुध गांव पहुंची। स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा और लोक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
7: ऑल इंडिया एनसीसी गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड एक्सपीडिशन ने पिनभावा दर्रा पार कर अभियान के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। 24 अगस्त को किन्नौर के कफनू से शुरू हुआ यह दल 10 दिनों में करीब 60 किलोमीटर कठिन सफर तय कर स्पीति के मुद गांव पहुंचा। करीब 7,710 फीट की ऊंचाई से शुरू हुआ अभियान मालिंग कारा पुष्टिरांग और बालतार होते हुए 16,125 फीट ऊंचे पिनभावा दर्रे तक पहुंचा। ग्लेशियर पथरीले रास्तों नदी पार करने और खड़ी चढ़ाइयों के बीच कैडेट्स ने अदम्य साहस और अनुशासन का परिचय दिया। स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा और लोक नृत्य के साथ कैडेट्स का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: युवाओं को खेल की ओर आकर्षित करने और नशे से दूर रखने के उद्देश्य से नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में सिरमौर क्रिकेट लीग का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 500 से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया है। धाटीधार क्रिकेट क्लब के सचिव मोहित ठाकुर ने आज नाहन में बताया कि ये क्रिकेट लीग 8 से 12 सितंबर तक आयोजित की जाएगी।
8: युवा बिल्कुल मैदान में नहीं दिख रहे, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है? नशा। नशा इस समय इतने चरम पर है, कैसे नशे से दूर रहा जाए, कैसे नशे को हम खत्म कर सकते हैं, हर तरह से प्रयास हो रहे हैं। उसी प्रकार हम स्पोर्ट्समैन हैं, तो हमारा प्रयास है कि हम स्पोर्ट्स के माध्यम से बच्चों को नशे से दूर रख सके। स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को खींच लाता है मैदान की तरफ, ये हमारा एक मोटिव है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने केंद्र से उठाया कैन खाद संकट का मामला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सेब बागवानों को जल्द राहत पहुंचाने का किया आग्रह। प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। रात 12 बजे मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्मोत्सव। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा सड़कों की सुरक्षा व रखरखाव के लिए विधानसभा में पारित संशोधन विधेयक से आम लोगों को मिलेगी सुविधा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुसार कैग रिपोर्ट से बेनकाब हुआ राज्य सरकार का व्यवस्था परिवर्तन, वित्तीय कुप्रबंधन की खुली पोल। और चंबा जिला में प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा शुरू, पहले दिन आज सैकड़ों श्रद्धालुओं ने डल झील में लगाई आस्था की डुबकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
9: शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। तो मुझे यानी सचिन कपूर को दीजिए इजाज़त। हरे कृष्णा टू ऑल, राधे राधे। हर किसी का अच्छा करें, बुरा किसी का भी ना करें, पर्यावरण की सेवा ज़रूर करें, स्वच्छ सुंदर ज़रूर रखें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है।

आपके परिवार पर हमेशा कान्हा की कृपा बनी रहे। नटखट नंदलाल आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ और शांति लाए, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गोरिया
1: आकर
0: गोरिया गोरिया आकर आ
2: गोरिया
3: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
4: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
5: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
6: कैसे?
7: कर्तव्य।
6: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
8: समझ गए सर।
6: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
9: चाय मांगी थी, क्या है ये?
10: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
9: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है और झेलना हमें पड़ता है।
11: अब क्या देख रहे हो पापा?
9: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
11: किससे?
9: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
11: पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
10: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
12: सुनो, आज बाहर खाना खाने चलते हैं ना?
13: क्यों, आपको मेरे हाथ का खाना?

0: पसंद नहीं है?
1: नहीं, ऐसी बात नहीं है।
0: तो फिर कैसी बात है?
1: वो मेरा आज बर्तन धोने का मन नहीं है।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। हिमाचल में अब विधायकों की गाड़ियों में लगेगी विशेष झंडी। हिमाचल में बनेगा अलग खनन विभाग, नई ड्रेज नीति लाएगी प्रदेश सरकार। प्रदेश के 26 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार, स्कूलों के 21, कॉलेजों के 5 होंगे सम्मानित। कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द मिलेगा एरियर। पशुओं को दी जा रही एक्सपायरी दवाएं। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधायकों की गाड़ियों पर डिस्टिंक्ट फ्लैग, विशेष पहचान झंडी लगेगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस व्यवस्था को लागू करने की मंजूरी दे दी है। विधानसभा सचिवालय एक सप्ताह में सभी विधायकों को विशेष पहचान झंडी जारी करेगा। 13वीं विधानसभा के दौरान विधायकों को डिस्टिंक्ट फ्लैग देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन किसी कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। अब इस निर्णय को प्रभावी किया जा रहा है। पठानिया ने कहा कि डिस्टिंक्ट फ्लैग लगाने का मुख्य उद्देश्य विधायकों को अलग आधिकारिक पहचान देना है। उन्होंने बताया कि कई बार विशेष कार्यक्रम में जाने पर विधायकों की गाड़ियां जाम में फंस जाती थीं। वहीं विधायकों को अपनी पहचान तक बतानी पड़ती है, विशेषकर प्रदेश से बाहर जाने के दौरान ऐसी स्थिति सामने आती है। फ्लैग लगने के बाद उनकी गाड़ी देखकर ही विधायक की पहचान हो सकेगी। हिमाचल प्रदेश की नदियों में जमा रेत, बजरी और गाद केवल पर्यावरणीय चुनौती नहीं बल्कि हजारों करोड़ की संभावित अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गए हैं। विधानसभा

0: केंद्र से अनुमति मिलने के बाद कुल्लू में 3 साइटों पर ड्रेसिंग शुरू करवाई गई।
1: हिमाचल के उन शिक्षकों का मान बढ़ने जा रहा है जिन्होंने चौक और ब्लैक बोर्ड से आगे बढ़कर हजारों विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ा। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के राज्य शिक्षक पुरस्कारों के लिए 26 शिक्षकों के नाम तय कर दिए हैं। इनमें स्कूलों के 21 और कॉलेजों के 5 शिक्षक शामिल हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर लोक भवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। चयनित स्कूल शिक्षकों में 15 को सामान्य और 6 को विशेष पुरस्कार मिलेगा। तकनीकी शिक्षा के 5 शिक्षक और पिछले वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कर चुके एक स्कूल शिक्षक को भी राज्य सम्मान दिया जाएगा। 51 शिक्षकों के साक्षात्कार और प्रस्तुतिकरण के बाद शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने 26 नाम पर अंतिम मोहर लगाई है। पुरस्कार के लिए चयनित 21 स्कूल शिक्षकों में 15 को सामान्य पुरस्कार और 6 को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। सामान्य पुरस्कार गैर जनजातीय बाय कठिन क्षेत्र श्रेणी में और विशेष पुरस्कार भी गैर जनजातीय बाय कठिन क्षेत्र श्रेणी में प्रदान किए जाएंगे। विधानसभा मॉनसून सत्र के अंतिम दिन कर्मचारियों के डीए एरियर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष बीच काफी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के विधायकों ने सरकार से कई सवाल दागे जिसका मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार जल्द डीए व एरियर देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल आर्थिक चुनौतियों से लड़ा है लेकिन सरकार ने कर्मचारी व पेंशनर्स पर आर्थिक संकट नहीं आने दिया। सीएम ने कहा कि सरकार ने 67 वर्ष तक के सभी पेंशनर्स का पूरा एरियर जिसमें मेडिकल बिल, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकेशमेंट सभी देनदारियां दे दी हैं। उन्होंने कहा कि क्लास 4 कर्मचारियों की पूरी देनदारियां व एरियर सरकार दे चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित एरियर के भुगतान को लेकर कहा है कि एरियर का भुगतान किसी के दबाव में आकर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से एरियर का भुगतान किया जा रहा है और आगे भी परिस्थितियों के अनुसार कर्मचारियों वो पेंशनर्स को उनका बकाया दिया जाएगा। हिमाचल के कई सरकारी विभागों में अनियमितताएं और खामियां पाई गई हैं। विधानसभा मॉनसून सत्र के अंतिम दिन प्रस्तुत की गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में पशुपालन, ग्रामीण विकास मनरेगा, कारागार व सुधारात्मक सेवाएं और लोक निर्माण विभाग में गंभीर खामियां उजागर की गई हैं। कैग ने राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि जेलों में सुरक्षा व चिकित्सा कर्मचारियों की कमी को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। ग्रामीण विकास विभाग में जॉब कार्ड और मजदूरी भुगतान में होने वाली देरी को रोकने के लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाए। पशुपालन विभाग में दवाओं की खरीद के लिए ऑनलाइन इन्वेंट्री प्रबंधन सिस्टम लागू करने की सख्त आवश्यकता जताई गई है ताकि एक्सपायरी दवाओं के वितरण को रोका जा सके। मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए तैयार की गई यह कैग रिपोर्ट मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में रखी। पशुपालन विभाग में दवाओं की खरीद और वितरण में भारी लापरवाही सामने आई है। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किया जा रहा है। ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने शताब्दी वर्ष के तहत 100 ईयर्स में 100 इनिशिएटिव्स थीम के साथ विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा की है। ये जानकारी ओएसए के अध्यक्ष संजीव गांधी ने प्रेसवार्ता के दौरान दी। शताब्दी समारोह के तहत जिला प्रशासन कांगड़ा और रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से 50 रुपये प्रति टिकट की लकी ड्रॉ योजना भी शुरू की गई है। इसमें कुल 100 पुरस्कार रखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश के 16 होटलियर्स द्वारा चंबा, मनाली, शिमला, मंडी, धर्मशाला, पालमपुर, बीड़, कसौली और चैल सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर 2 रात और 3 दिन के 32 स्टे पैकेज प्रायोजित किए गए हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल, लैपटॉप, मोबाइल फोन और वॉशिंग मशीन समेत कई आकर्षक पुरस्कार भी शामिल हैं। संजीव गांधी ने बताया कि लकी ड्रॉ से प्राप्त पूरी राशि रेड क्रॉस सोसाइटी को दी जाएगी। इस राशि का उपयोग कैंसर पीड़ितों तथा आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 13 से 15 नवंबर तक शताब्दी समारोह के मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे।

0: ये क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
2: समझे?
3: माखन की मिठास, मुरली की धुन, जीवन में आपके बरसे खुशियों का जुनून, राधा कृष्ण का प्यार, कन्हैया का नटखटपन, माँ यशोदा का लाड प्यार, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा

आपके परिवार पर हमेशा कान्हा की कृपा बनी रहे। नटखट नंदलाल आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ और शांति लाए, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गोरिया आकर गोरिया गोरिया आकर आ
1: गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे?
6: कर्तव्य।
5: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है और झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सुनो, आज बाहर खाना खाने चलते हैं ना?
12: क्यों, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है?
11: नहीं ऐसी बात नहीं है।
12: तो फिर कैसी बात है?
11: वो मेरा आज बर्तन धोने का मन नहीं है।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक

संगीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
3: समझे?
4: माखन की मिठास, मुरली की धुन, जीवन में आपके बरसे खुशियों का जुनून, राधा कृष्ण का प्यार, कन्हैया का नटखटपन, माँ यशोदा का लाड प्यार, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा

0: गोरिया
1: आकर
0: गोरिया गोरिया गोरिया आकर आ
2: गोरिया
3: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
4: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
5: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
6: कैसे?
7: कर्तव्य।
6: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
8: समझ गए सर।
6: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
9: चाय मांगी थी, क्या है ये?
10: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
9: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है और झेलना हमें पड़ता है।
11: अब क्या देख रहे हो पापा?
9: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
11: किससे?
9: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
11: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
10: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
12: सुनो, आज बाहर खाना खाने चलते हैं ना?
13: क्यों, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है?
12: नहीं ऐसी बात नहीं है।
13: तो फिर कैसी बात है?
12: वो मेरा आज बर्तन धोने का मन नहीं है।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।